92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

ये तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तुहां सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इं बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 MHz पर यह तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां सारे ई बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूंगा।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: से सुनना थी।
1: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
0: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
1: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
0: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
1: कब्ज हो या काला मल,
0: धीरे धीरे होगा हल।
1: भूल जाओ अगर गोली खाना,
0: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
1: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
0: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस

0: जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
1: सूरज।
2: हाँ बोल।
1: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
2: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
3: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
2: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
3: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
4: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
5: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला नई हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला अपना गांव संभाल

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज।

0: पटेल, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आज

0: ने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज।
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
4: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 MHz पर श्रोताओं, इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। और श्रोताओं, अब से लेकर 11 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपके साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियां साझा और सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत। और श्रोताओं, गीत सुनाने से पहले और कुछ आपके साथ शेयर करने से पहले, आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से, रेडियो गुंजन के पूरे परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी तो कल है, लेकिन जन्माष्टमी से पहले जो भी तैयारियां होती हैं वो पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो हमारे भक्तजन, या यूं कहें कि सभी लोग जो भी भक्ति के रंग में रंगने वाले हैं, वो आज से ही श्री कृष्ण के पावन पर्व जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं। इसलिए सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब चलते हैं, जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का मौसम। श्रोताओं, 17 डिग्री सेल्सियस इस समय धर्मशाला का तापमान है और वातावरण में नमी है 86%। और श्रोताओं, धर्मशाला के मौसम के बारे में वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि धर्मशाला के मौसम का जो है वो खासकर बारिश के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन कुछ कहती है और ना होते हुए भी, वेदर प्रेडिक्शन में ना दिखाते हुए भी बारिश जो है वो बरस जाती है। और आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले दिन जो हैं, आज और कल, या यूं कहें कि 3-4 दिनों तक जो है वो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तेज से, बहुत अधिक तेज बारिश जो है वो कुछ कुछ स्थानों पे हो सकती है। इसलिए बारिश की इस चेतावनी को यूं ही हल्के में न लें, पूरा अपने दिलो दिमाग पर इस चेतावनी को बिठा करके ही अपने आगे के जो भी कार्यक्रम है वो बनाएं। और कहीं आने जाने का आपका प्लान है तो उसे भी उसी हिसाब से आप बनाएं, या फिर आगे उसको आप स्थगित कर सकते हैं या उसको प्रीपोन कर सकते हैं। श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त आपके साथ पिंकी। कार्यक्रम का आगाज करते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत के साथ। बात हो रही है बारिश की, सावन की। सावन तो बीत गया, लेकिन ये प्यारा सा गीत शायद आपको सुनाना हम भूल गए, इसलिए आज के कार्यक्रम में सुना रहे हैं ये प्यारा सा नटखट सा गीत। एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

जी हाँ श्रोताओ, आया सावन झूम के। सावन में भी इतनी बारिश झमाझम नहीं गिरी होगी जितनी बारिश इन दिनों गिर रही है। चलिए, बारिश का मौसम है और बारिश होना भी स्वाभाविक है। आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाने जा रही हूँ मैं, हिना फिल्म का। और ये गीत है 1991 में आई फिल्म हिना का बहुत ही मशहूर गीत। गीत के बोल हैं, देर ना हो जाए। और इस फिल्म का ये बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है और सदाबहार गीतों में गिना जाने वाला गीत। इस फिल्म के और संगीत के बनाने के पीछे श्रोताओं बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है। आर के फिल्म्स का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म हिना, महान शोमैन राज कपूर का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हिना फिल्म थी। वे भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार और शांति, इंसानियत का संदेश देने वाली सीमा पार प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। राज कपूर ने इस फिल्म की तैयारी शुरू कर दी थी और संगीतकार रविंद्र जैन के साथ मिलकर कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन जून 1988 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही राज कपूर का अचानक निधन हो गया। फिर इनके बेटे रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म। राज कपूर के निधन के बाद आरके बैनर और उनके इस अंतिम सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने संभाली। उन्होंने फिल्म का निर्देशन किया और अपने पिता के विजन को जिंदा रखा। और अब बात करते हैं देर ना हो जाए कहीं इस गाने की। ये गाना फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना, जिसे एक कव्वाली और विरह गीत के रूप में पेश किया गया था। इस गाने के बोल स्वयं रविंद्र जैन ने लिखे थे, जो फिल्म की कहानी को पूरी तरह बयां करते हैं। फिल्म में हीरो, जो कि ऋषि कपूर हैं, अपनी याददाश्त खोकर पाकिस्तान के हिस्से में चले जाते हैं और भारत में उनकी मंगेतर उनका इंतज़ार कर रही होती है। संगीतकार रविंद्र जैन ने इनमें पारंपरिक राजस्थानी और पंजाबी लोक धुनों के साथ सूफी कव्वाली का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि ये गाना शादी बारात से लेकर गम के माहौल तक हर माहौल में फिट हो गया। इस गीत को लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने अपनी जादुई आवाज़ों से संवारा है। तो श्रोताओ, इस गीत के बारे में और इस गीत की जो फिल्म है उसकी कहानी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैंने जो है वो उसका सारा वृतांत आपको सुना दिया। और अब आइए चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि ये गीत सुनाने में भी कहीं देर ना हो जाए, इसलिए एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक।

0: श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अब कार्यक्रम में समय है प्रादेशिक समाचारों का। यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: पहले आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर दिया बल। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, सदन में चार विधेयक होंगे पारित। युवाओं के लिए रोजगार गारंटी पर जवाब देगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 1000 नई इलेक्ट्रिक और युवाओं से धोखा करने का लगाया आरोप। और चंबा जिले के प्रधानमंत्री

0: उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रहनी चाहिए बल्कि निरंतर समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल माध्यमों से गाद निकालने की प्रक्रिया नियमित तौर पर अपनाने और इसके लिए स्पष्ट मानदंड तथा मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने का आह्वान किया। प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के पटल पर चार महत्वपूर्ण दस्तावेज रखेंगे, जिनमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग की बीते तीन वर्षों की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा सदन में चार अहम विधेयकों, युद्ध पुरस्कार, भारतीय स्टाम्प, पंचायती राज तथा सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के उपरांत पारित किया जाएगा। नियम 130 के तहत 31 अगस्त को लाए गए युवाओं के लिए रोजगार गारंटी प्रस्ताव पर सरकार जवाब देगी। इसके अलावा नियम 324 के अंतर्गत 11 विधायक अपने संबंधित क्षेत्रों के जनहित के मुद्दे उठाएंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जल्द ही 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेंगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अपने पहले बजट में ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार का ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। इस बीच पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित परिवहन देने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांगड़ा जिले में भी अलग अलग रूटों पर दौड़ रही 45 इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तस्वीर पेश कर रही है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें अब महज सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं बल्कि ग्रीन हिमाचल की नई पहचान बनती जा रही है।
2: सीसीटीवी से लैस इन बसों में सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक और शांत सफर की सुविधा मिल रही है। बसों का एक बड़ा फायदा इनके कम परिचालन खर्च में भी देखने को मिल रहा है। जहां डीजल बस के संचालन पर करीब 25 से 26 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बस का खर्च 11 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर है। कांगड़ा, धनशिला, नगरोटा, बगवा, देहरा, पालमपुर, पठानकोट, बैनाथ और जसूर सहित कई स्थानों पर करीब 6,35,00,000 रुपए की लागत से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं जयसिंहपुर और शाहपुर में भी करीब 1,26,00,000 रुपए की लागत से नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कम शोर, कम प्रदूषण और आरामदायक सफर के चलते यात्री में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहां यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 90% से ज्यादा पेंशन धारकों को अपात्र घोषित करना अत्यंत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय सरकार उनकी पीड़ा को बढ़ाने का काम कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीते तीन वर्षों में अवैध खनन के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपए की राशि वसूल की गई है, जबकि शेष 2930 मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न नदी नालों में कुल 305 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं और सरकार को इनसे करीब 303 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के लिखित जवाब में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई प्रक्रिया तय नहीं की है। वहीं पैरामेडिकल कर्मचारियों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अनियमित कर्मचारियों के मामले में उन्होंने कहा कि इनके संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से शुरू हो रही है। 19 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
5: चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा कल यानी 4 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा का छोटा स्नान कल मणिमहेश पवित्र डल झील में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभिन्न सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा जुटाई जा चुकी हैं। वहीं सुरक्षा, यातायात, आवास, लंगर, घोड़े खच्चर व हेली टैक्सी की सुविधा भी इस दौरान मणिमहेश यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं इस यात्रा का शाही स्नान 19 सितंबर को होगा, जिसके पश्चात इस यात्रा का समापन हो जाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के अनेक भागों में बीती रात हुई वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोलन जिला के परवाणु में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से NH5 पर मलबा व चट्टाने गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने वाहन चालकों को प्रभावित बाईपास के बजाय पुराने काल का पिंजौर मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उधर सिरमौर जिले में गिरी जटौन डैम से आज सुबह फिर पानी छोड़ा गया। जिला आपदा प्रबंधन ने मैदानी इलाकों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा व सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 117 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 141 विद्युत ट्रांसफार्मर और 51 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दैनिक भास्कर ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है। सीधे नियुक्ति का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन, राज्य सरकार को एक माह में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश। 5 साल में हिमाचल में बनेंगे 2,18,000 घर शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, विधानसभा में बोली सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिला कोटा। अमर उजाला की एक खबर है, सड़क तोड़ी तो भरना होगा दोबारा बनाने की लागत का 5 गुना जुर्माना। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, हिमाचल की बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से करीब 60% से अधिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर दिया बल। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, सदन में 4 विधेयक होंगे पारित। युवाओं के लिए रोजगार गारंटी पर जवाब देगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेंगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार को लेकर युवाओं से धोखा करने का लगाया आरोप। और चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से होगी शुरू, सभी तैयारियां पूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। प्रादेशिक समाचारों के बाद सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे चलेंगे सीधा सीधा प्यारे से गीत की ओर। बहुत ही प्यारा सा सदाबहार नगमा आप सभी के लिए। आप सबकी नज़र यूं ही बने रही है हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ बता दें आपको इस समय हम अपने रेडियो गुंजन के फेसबुक पेज पर भी लाइव हैं, आप हमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। श्रोताओ अब कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनाएंगे, लेकिन गीत सुनवाने से पहले थोड़ी सी बातचीत भी अपने श्रोताओं के साथ हम ज़रूर करेंगे। श्रोताओ समय जो है वो बदलता है, कहते हैं परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और बीते कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है। और एक चीज़ खासकर बात करें हम चिट्ठी पत्री खत की, तो उसके लेखन में भी बदलाव हुआ है। और कहीं ना कहीं हम अपनी इस पुरानी धरोहर कह सकते हैं, इस धरोहर को भी थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, चिट्ठी का जो स्थान है वो फ़ोन कॉल ने ले लिया है, या यूं कहें कि उससे भी कम हम मैसेज करते हैं। और मैसेज को भी कई बार हम ऐसे ही ऊटपटांग तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी टाइप कर देते हैं इन शॉर्ट, और टाइप करने वाला भी जिस तरह से भेजता है उसी तरह से आगे पढ़ने वाला भी उसे उसी ही अंदाज में समझ भी लेता है। लेकिन चिट्ठी का बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना महत्व भी है, भावनात्मक संबंध भी है हम लोगों के भावनाओं के साथ। और चिट्ठी हर किसी के बस की बात नहीं थी लिखना, चिट्ठी लिखने के लिए प्रॉपर एक व्यक्ति ढूंढा जाता था, चाहे गांव था या जो भी था, और उसकी जो शुरुआती लाइनें होती थी, बीच में उसके जो भाव उकेरे जाते थे वो कोई खास खास इंसान ही लिख सकता था। और बात करें अपने जज्बातों की अपने भावों की, तो हम कहते थे और वो जब भाव उस चिट्ठी में उतरते थे और उस चिट्ठी को पढ़ने वाला जब उस चिट्ठी को पढ़ता था तो वो पढ़ते पढ़ते उन सब भावों को जो है वो महसूस भी करता था। अब दौर बदला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारी चिट्ठियां हैं हमारी धरोहर हैं, और कुछ लोगों ने अभी भी अपनी पुरानी चिट्ठियाँ संभाल करके रखी हैं। आर्मी के जवान जब साल भर में एक बार घर आते थे, और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती थी कि वो साल भर में भी छुट्टी नहीं उन्हें मिल पाती थी, तो अपने घर आने की जो तड़प है, घर वालों के साथ जो उनका प्यार लगाव स्नेह है, वो उस चिट्ठी में जो है वो पूरा पूरा उड़ेल देते थे। और घर के सारे सदस्य एक साथ मिल बैठ के वो चिट्ठियाँ पढ़ते थे और उन चिट्ठियों को संदूक में कहीं ना कहीं संभाल के रखते थे। और मेरी जान पहचान के कुछ ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने उस दौर की चिट्ठी अभी भी संभाल के रखी हैं। तो कहीं ना कहीं श्रोताओं दौर बदला है, लेकिन वो जो हमारे भाव हैं वो उन चिट्ठियों में कहीं ना कहीं कैद हैं। और बात करें दूसरी और लेखनी की, लिखने की जो कला है वो आनी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिसे आती है वो कमाल करते हैं। और हमारी सरकारी जो भी औपचारिकताएं हैं, सरकारी जो भी दस्तावेज हैं, उनमें भी लिखने का जो महत्व है वो बहुत खासा है। चलिए अगर आप अभी भी कहीं दूर हैं, दूर प्रदेश में हैं और किसी से बात नहीं हो पाती है, तो चिट्ठी एक बहुत ही प्यारा और हम कह सकते हैं हमारा एक एंटीक माध्यम है अपने भावों को व्यक्त करने का। आप चिट्ठियां फिर से लिख सकते हैं, सरकार की ओर से पोस्ट ऑफिस की ओर से कोई पाबंदी नहीं है कि आप चिट्ठियां ना लिखें चिट्ठियां ना भेजें, बाकायदा चिट्ठियां लिख भी सकते हैं एक दूसरे को, हम चिट्ठियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने भावों को अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। श्रोताओ आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ और सुनवाती हूँ आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, गीत आपने सुना, खत लिख दे सावरिया के नाम, आए दिन बहार की फिल्म का ये गीत था। और गीत से पहले हम खत की ही, चिट्ठी पत्री की ही बात कर रहे थे कि क्या ज़माना था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी और उनका इंतज़ार जो है वो किया जाता था। और आजकल के दौर में इसे शॉर्ट हैंड तो नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कुछ लिखते हैं तो एक तो लिखते समय हम भाषा को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं, उसमें भाषा की जो खूबसूरती होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। और वहीं दूसरी ओर जो उस संदेश को पढ़ता है वो भी उसे उसी तरह से समझ लेता है। हम किसी को ये नहीं कहने की जहमत उठाते कि आप जो लिख रहे हो वो बात हम समझ तो रहे हैं, लेकिन लिखा जो गया है वो तरीका गलत है, उसमें शब्द गलत हैं, उसमें शैली गलत है। लेकिन ये चीज़ें नोट करने वाले भी कोई कोई इंसान होते हैं, और जब कोई नोट करता है तो फिर सामने वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क देखा जाए तो श्रोताओं नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। भाषा का कह सकते हैं उत्पत्ति, भाषा को एक व्यवस्थित सजे संवरे रूप में आने में सालों अरसा लग जाता है। और जब हम उस सुंदर सुसज्जित भाषा का इस्तेमाल ना करके टूटे फूटे शब्दों का, या यूं कहें कि कई बार बहुत ही ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि उस सेंटेंस में कहीं पे फिट नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं और मजबूरन सामने वाला जो पढ़ता है वो पढ़ता भी है, समझता भी है, और उसी तरह से वो फिर प्रश्नोत्तरी उनकी चलती रहती है, टूटी फूटी भाषा आगे से आगे बढ़ती जाती है और भाषा का जो है वो एक तरह से निरादर होता है। खासकर बात करें हिंदी की, और ये बात मेरे जहन में इसलिए आई है क्योंकि हिंदी दिवस आने वाला है थोड़े ही दिनों में। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैं ये मानती हूँ कि एक माँ की तरह है। जिस तरह से एक माँ ममता से भरी होती है, वो अपने बच्चे को लाड प्यार दुलार तो करती ही है, लेकिन किसी और का बच्चा उसे प्यार स्नेह की ज़रूरत होती है तो उसे भी गोद में उठा करके वो उतना ही प्यार स्नेह देती है। उसी तरह से हमारी हिंदी जो है वो उसकी अपनी खुद की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो दूसरी भाषाएँ हैं, हम कह लें कि उर्दू के कुछ शब्द हैं या इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जो कि उमड़ते घुमड़ते हिंदी की ओर आए और हिंदी ने उसे प्यार से गले लगाकर अपने आप में जो है वो समाहित कर लिया। और अब वो शब्द इतने सहज लगते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो हिंदी है या इंग्लिश है या उर्दू है। जिस तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं रोज़ स्कूल के लिए, उन्हें बस में भेजते हैं, उनका और भी छोटे छोटे वाक्य हैं, उनका टिफ़िन देना, तो इनमें बहुत से शब्द हैं जो सहजता से हिंदी में समा गए हैं, जैसे कि स्कूल, स्कूल स्कूल ना होकर पाठशाला है हिंदी में अगर कहें। लेकिन अब कोई कहे कि पाठशाला तो थोड़ा लंबा भी लगता है, अटपटा भी लगता है, स्कूल इन शॉर्ट हम कह देते हैं। उसी तरह से बच्चों की स्कूल बस, हम ये नहीं कहते कि बच्चों का वाहन आ गया है, सिंपली हम कह देते हैं कि स्कूल बस आ गई है। इसी तरह से और भी बहुत से छोटे छोटे शब्द हैं जो हिंदी में बहुत ही सहजता से आराम से फिट हो गए हैं और हमें समझने में भी और कहने में भी नहीं लगता अटपटा। लेकिन भाषा का जब हम रूप ही बिगाड़ देते हैं, हिंदी का हम जो एक सुंदरता है, एक सहजता है, उसे तोड़ मरोड़ करके कुछ का कुछ बना देते हैं तो सुनने में बहुत ही दुख होता है। इसलिए जब भी आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा, क्योंकि हम कहते हैं कि वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त हर किसी के पास होता ही है, तो हिंदी खासकर हमारी जो भारतीय एक बहुत ही सुंदर सी भाषा है, उसके साथ तोड़ मरोड़ का हम जो है ये काम कम करें या ना करें तो बहुत बेहतर होगा। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आपके साथ बातचीत भी हो रही है, साथ ही साथ आपको जो है वो प्यारे प्यारे से गीत भी सुनवाए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवा रहे हैं आपको एक और प्यारा सा गीत, ये नए दौर का और नए ज़माने का गीत ना हो करके उस दशक का गीत है जब
गीत सुने जाते थे, समझे जाते थे, उनकी धुनों पर थिरका भी जाता था। तो आइए सुनते हैं ऐसा ये गीत कार्यक्रम में आगे। और आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, हमारा साथ बना रहेगा 11 बजे तक।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब समय है आपको आज के दिन से जुड़ी हुई बातें यानी इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास घटा था वो बताने का। श्रोताओ आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर 1783 अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके साथ ही अमेरिकन क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ। तीन सितंबर 1928 वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन की खोज की, जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। तीन सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा के कुछ घंटों बाद अटलांटिक महासागर में एसएस एथेनिया जहाज टर्पीडो हमले का शिकार हुआ। 3 सितंबर 1971 कतर को 55 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता मिली। 3 सितंबर 1976 नासा का अंतरिक्ष यान वाइकिंग 2 मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और वहां की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी। 3 सितंबर ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन इतिहास में दर्ज हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब श्रोताओं फिर से चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत करते हुए मुझे याद आया कि जो कुछ समय पहले मैं बात कर रही थी चिट्ठी पत्री लिखने की, वो एक अलग ही समय था, अलग ही दौर था। वो यादें, वो बातें, वो भावनाएं, वो जज्बात कैद हो जाते थे उस ख़त में और वो ख़त हम संभाल संभाल कर रखते थे और जब भी वो ख़त निकलते हैं उन्हीं यादों में, उन्हीं बातों में हम फिर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और लिखना जो है श्रोताओं, वो एक कला है। ये कला हर किसी को नहीं आती, लेकिन जिसे आती है वो अच्छे से समझता है कि शब्दों को किस तरह से लिखना है, किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से उनकी जुगलबंदी करके जब वो शब्द किसी कविता, किसी कहानी या किसी गीत का हिस्सा बनते हैं तो फिर लिखने वाले की भी खुशी जो है वो चार गुना हो जाती है। और जो लोग सुनते हैं उन शब्दों को, उन लिखे हुए, जैसे माला बनती है एक धागे में पिरोकर, चाहे वो मोतियों की माला हो या फूलों की माला हो, जब वो एक साथ जुड़ करके बंद करके तैयार होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। उसी तरह से हमारे ये शब्द होते हैं, जब इन्हें हम चुन चुन कर लिखते हैं एक पंक्ति में या एक पैराग्राफ में, जब वो कविता का या शेर व शायरी का कोई भी ऐसा रूप लेते हैं तो पढ़ने वाले के, जो कहीं ना कहीं लिखने वाले जो हैं उन्होंने अपने भावों को उकेरा होता है उन लाइनों में, और जो पढ़ता है व्यक्ति उसे लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो शब्द हैं, ये मेरे लिए ही लिखे गए हैं। तो ये जादू होता है श्रोताओं लेखनी का और लिखने का। अगर आप लिखते हैं अच्छी बात है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि लिखना एक तो कला है और दूसरा लिखने का जो ये कला है, ये जो काम है, ये कहीं ना कहीं हमें उस लेखनी के अंदर ले जाता है, उन शब्दों को जोड़ना, उन्हें सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से लिखना। और हम बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में जो टेंशन परेशानियां होती हैं वो थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाती हैं। इसलिए आप भी अगर कभी फ्री हो तो लिखने का काम जरूर शुरू कीजिए, खुशी मिलेगी और टेंशन दूर भागेगी।

जी हाँ श्रोताओं, असा हुण तुर जाना है। दिन तो नहीं पर मिनटें थोड़ी रही हैं, लेकिन जितनी भी मिनट्स बची हैं उन सब का भरपूर फ़ायदा हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। आपके साथ बातचीत भी करेंगे और प्यारे प्यारे से गीत भी आपको सुनवाएंगे अभी 11 बजे तक। और आज के इस कार्यक्रम में जो गीत मैं चुन करके लाई हूँ, उम्मीद करते हैं आपको वो गीत पसंद आ रहे होंगे। और श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, जिन्होंने ये संदेश भेजा है कि आज के कार्यक्रम में जो गाने हम सुनवा रहे हैं वो उन्हें बेहद पसंद आ रहे हैं। तो हमारे उन श्रोताओं का दिल से शुक्रिया, दिल से आभार कि उन्हें हमारी ये छोटी सी कोशिश या छोटी सी मेहनत जो है ये पसंद आ रही है। श्रोताओं, गीत संगीत का अपना अलग ही मज़ा होता है, अलग ही महत्व होता है। हर जगह का अलग अलग संगीत होता है और वो संगीत हमें उसी माहौल में ले जाता है। चलिए श्रोताओं, अब आपको कार्यक्रम में एक और गीत सुनवा रहे हैं प्यारा सा, और ये गीत है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रविंद्र जैन और लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़ में ये गीत है। श्रोताओं, इस गाने को अपनी आवाज़ से अमर बनाने वाली लता मंगेशकर जी थी, और राज कपूर जी का मानना था कि इस गाने में जो मासूमियत और जो गंगा, इस फिल्म की जो हीरोइन थी उसकी पवित्रता जो चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ लता जी की आवाज़ ही दे सकती है। गाने में लता जी द्वारा ली गई तान और अलाप जो कि आप सुनेंगे गाने में, वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म की रिलीज से पहले मंदाकिनी को कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब ये गाना पर्दे पर आया तो उनकी सादगी, पहाड़ों का बैकग्राउंड और सफ़ेद साड़ी में उनका डांस, उनके एक्सप्रेशन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये गाना इस फिल्म की USP बन गया और इसने मंदाकिनी को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया, और इस गाने के बाद ही कह सकते हैं कि मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। तो आइए अब लिए चलते हैं आपको इस गीत की मधुरता की ओर। श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और इस गीत के बारे में हमने इस गीत के पीछे की कहानी भी आपके साथ साझा की। श्रोताओं, गीत संगीत का अपना अलग ही महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में, या यूँ कहें कि हर किसी की ज़िंदगी में। और गीतों से जुड़ी एक बात मुझे याद आ रही है कि हम अपनी उम्र को देखें या उम्र की उन यादों को एक बार फिर से रिमाइंड करें, तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमने जिस उम्र में सुने होते हैं, उन गीतों को दोबारा जब हम अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं तो हम अपनी उम्र के उसी समय में वापस चले जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जो गाना अपनी चौथी पांचवी क्लास में सुना था, उन गीतों को मैं अभी सुनती हूँ तो मैं फिर से चौथी पांचवी की बच्ची के उसी रूप में कह लो या उसी समय में वापस चली जाती हूँ। जो गीत मैंने कॉलेज टाइम में सुने थे, उन गीतों को जब आज के दिनों में मैं सुनती हूँ तो मैं वैसे ही उन गीतों में खो जाती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। या जो गीत मैंने किसी खास मौके या किसी माहौल में सुने होते हैं, किसी शादी विवाह फंक्शन में, तो उसी माहौल में वो गीत ले जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चलिए, होता होगा, या अगर नहीं भी होता है तो आप कमेंट करके जो आज के इस कार्यक्रम की वीडियो है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं श्रोताओं, जो गीत अभी आपने सुना सुन साहिबा सुन, उससे जुड़ी एक छोटी सी बात वो भी आपके साथ साझा कर देते हैं। मेरी बड़ी बहन है, उम्रदराज है, लगभग 60 साल उनकी उम्र है। तो एक दिन बैठ करके हमारी गीतों को लेकर के बात हो रही थी और वो इस गीत को गुनगुना रही थी, और हालांकि गायकी उनकी बहुत अच्छी नहीं है पर मैंने कहा ये गीत बड़ा यादगार है, बचपन में हमने भी बहुत सुना है। तो दीदी ने मुस्कुराकर कहा कि जब मेरी शादी नज़दीक आ रही थी, उन दिनों ये फिल्म आई थी और मैं महज 18 साल की थी, और एक तरफ वो अल्हड़पन और दूसरी तरफ शादी की एक्साइटमेंट भी थी, दुख भी था, और वहीं से ये गीत कहीं ना कहीं रेडियो पे और कहीं ना कहीं सुनाई देता था। और मज़े की बात ये कि जिस दिन कहते हैं शादी हो रही थी उस दिन टेप रिकॉर्डर होते थे शायद उन दिनों, तो टेप रिकॉर्डर पे ये गीत बार बार बज रहा था। तो ये गीत उनके जहन में इस तरह से फिट हो गया है कि जब भी ये गीत बजता है तो वे कहते हैं कि मैं अपनी शादी के दिन में चली जाती हूँ और मुझे वो सारी रस्में, वो सारे रिवाज याद आते हैं कि उस दिन ये हुआ था और मेरी शादी हुई थी। तो ये गीत उनकी यादों के साथ हमेशा बना हुआ है। तो श्रोताओं, ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई गीत हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा होता है। आपकी ज़िंदगी के साथ भी, जहन के साथ भी ऐसी कुछ यादें होंगी गीत संगीत को लेकर, और गीत संगीत चाहे हम किसी भी मूड में हों, किसी भी माहौल में हों, हमें सुकून ही देते हैं। श्रोताओं, चलिए बातें बहुत हो गई और अब आपको लिए चलते हैं फिर से गीत संगीत की दुनिया में। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: फिल्मी गाने के नए

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आपको फिर से एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाने जा रहे हैं हम, लेकिन गीत सुनवाने से पहले थोड़ा सा उस गीत के बारे में आपको बता दें।

श्रोताओ, याराना फिल्म का गीत कार्यक्रम में आगे आप सुनने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़। और ये जो गीत है ये माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया है, मेरा पिया घर आया गीत के बोल हैं। और ये गाना मूल रूप से नुसरत फ़तेह अली खां की एक मशहूर सूफ़ी कव्वाली मेरा पिया घर आया से प्रेरित होकर बनाया गया है। सूफी संगीत में ये शब्द भगवान ईश्वर से मिलन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसे डेविड धवन की फिल्म में एक कमर्शियल डांस नंबर के रूप में जो है वो दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं, माधुरी दीक्षित का दमदार डांस इसमें है, उनके एक्सप्रेशन और गीत में उनके पिया की घर वापसी के ऊपर ये जो गाना है उसमें उनका सजना संवरना और उनके पिया के घर वापस आने की जो खुशी है उसी के रूप में इस गीत को जो है वो दर्शाया गया है, फिल्माया गया है। माधुरी दीक्षित का वो अलबेला अनोखा सा डांस और सरोज खान की कोरियोग्राफी ने इस गीत में जो है वो चार चांद लगा दिए हैं। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बता दें आपको, इस वक्त आप हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

1.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। गीत सुन रहे थे आप बहुत ही प्यारा मेरा पिया घर आया, बहुत ही बेहतरीन डांस और अभिनय इसमें माधुरी दीक्षित का है और इस गीत को सुन करके हमारे भी पैर कहीं ना कहीं थिरक उठते हैं। तो चलिए अब थिरकन से थोड़ा सा विराम लेते हैं और आपको लिए चलते हैं हल्के से क्लासिकल दौर की ओर। गाइड फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं अब कार्यक्रम का आज के गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रही हूँ, इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी
1: अरे कभी कभी अरे कभी कभी अरे कभी कभी
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जा के कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और हमेशा की तरह मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको हमेशा ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो कि अंगदान या त्वचादान या देहदान से जुड़े हुए काम कर रहे होते हैं और आपको उनका महत्व बताने की कोशिश करते हैं कि अंगदान, देहदान या त्वचादान का या नेत्रदान का महत्व कितना ज्यादा होता है और किसी की लाइफ बिल्कुल नर्क से स्वर्ग बन सकती है, किसी की लाइफ सीधा सीधा बच सकती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। इंदौर की डॉक्टर शोभा चमनिया जी, जो कि मध्य प्रदेश की पहला स्किन बैंक स्थापित करने वाली महिला हैं, आज हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं और त्वचा दान के महत्व को जानने वाले हैं इस शो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से। डॉक्टर शोभा जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।
3: नमस्कार डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
2: जी डॉक्टर चमनिया, आप मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, सो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि आप जिस बैच से हैं और जिस ईयर के बैच से हैं उस टाइम पर बहुत ही कम, जितना कि मैं जानता हूँ, बहुत ही कम फीमेल सर्जन्स हुआ करती थी और वो भी बर्न सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ही कम महिलाएं आगे आती थी। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए।
3: बर्न के मरीजों की केयर करना मुझे मेरे रेसिडेंसी में ही इसके बारे में बहुत अट्रैक्शन हुआ था। मैंने सर्जरी इसलिए ज्वाइन की कि हम लोग इंटर्नशिप में सब विशेषज्ञता में रोटेट करते हैं एक साल के लिए, तो उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी और सर्जरी मुझे एक ऐसी ब्रांच समझ आई थी कि जिसमें हम लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं कि इस मरीज को ये बीमारी है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि हम उसे ऑपरेट करके पक्का कर लेते हैं कि हम जिस सोच पे थे वो सही रास्ता था या हम गलत थे। मुझे बहुत स्ट्राइक करी थी जब मैं रेसिडेंट बनना चाह रही थी और इसलिए मैंने सर्जरी विषय चुना था। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि उस समय में महिलाएं ये विषय नहीं चुनती थी और मुझे बहुत समय तक मैं इस डिपार्टमेंट में अकेले ही रही।
2: जी आपने कौन से ईयर में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास की थी मैम?
3: 1978।
2: और कहाँ से की थी?
3: भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज।
2: अच्छा, तो आप बेसिकली शुरू से इंदौर की ही रहने वाली रही हैं या कहीं बाहर से आप आए इंदौर में?
3: मैंने भोपाल में अपना पूरा कॉलेज एजुकेशन किया, MBBS और MS दोनों भोपाल से हुआ और मेरे स्कूल की शुरुआत भी भोपाल से हुई थी। मेरे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमी, फाइनली भोपाल में पास किया। भोपाल से एक वर्ष के लिए मैं बम्बई में थी और उसके बाद इंदौर में, तो 1979 से अब तक इंदौर में एक ही अस्पताल में काम करती हूँ, वो है चौथा अस्पताल।
2: मतलब पूरी लाइफ आपने कभी जॉब चेंज नहीं की?
3: नहीं।
2: डॉक्टर आप हमें ये बताइए कि आपने जो मध्य प्रदेश में मिडिल इंडिया का पहला स्किन बैंक जो आपने लॉन्च किया, तो सर्जरी की रेसिडेंसी से एंड देन स्किन बैंक की को इनिशिएट करना, ये इनिशिएटिव लेना, यहाँ तक की जर्नी कैसे आप इंस्पायर हुई इस चीज के लिए?
3: जब मैं सर्जन बन गई तो मैं खोज रही थी कि मैं क्या करना चाहूँगी। रेसिडेंसी में मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में बर्न के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया करती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये स्पेशलिटी चूज करूँगी।
4: जी,
3: यंग सर्जन को बहुत नई चीज़ों की तरफ आकर्षण होता है और टेक्नोलॉजी तो हर यंग इंसान को आकर्षित करती है। मैं भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हुई थी, पर मुझे ये समझ में आया था कि मैं हर जगह जहाँ बहुत से मेल कॉलीग्स भी लाइन में हैं, मैं उस कतार की सबसे आखिर में रहूँगी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट प्रोफेशनल करियर में जहाँ आप अकेले हैं कभी भी नहीं सुना जाता है। तो मैंने फिर ये ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जो मेजॉरिटी मेन नहीं लेना चाहेंगे, आदमी सर्जन जो है मेल सर्जन्स वो नहीं करना चाहेंगे। और वो मैंने बहुत सोच के और बहुत ऑब्जर्व करके समझ में आया कि बर्न्स में बहुत कम लोग उस समय रुचि रखते थे, ये 1980 की बात है। तब मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा था क्या मैं बर्न्स कर सकती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल तपाक से जवाब दिया था आप अभी से इस पल से बर्न करने लगे, और अब से मैं इसमें आ गई। और क्योंकि ये मैंने अपने लिए ही प्रोफेशन चूज़ किया था, तो फिर मैं इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके उसमें पैशनेटली उसको समझने के लिए और उसे अच्छे से करने के लिए प्रेरित थी अपनी ड्राइव से और जिन लोगों ने जो मेरे मेंटर बने उनकी उनके डायरेक्शन से। और फिर मेरी मुलाकात डच स्किन बैंक के सीईओ से हुई जो कि इंडिया

0: थे, हमारी मुलाकात ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस में हुई
1: जी।
0: और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप टच स्किन बैंक आके देखिए हम लोग कैसा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: मैं लौटते अपने रिटर्न फ्लाइट में वहाँ रुक के और मैंने ये स्किन बैंक देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और हम लोग आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारे मरीज के इलाज में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये 2005 की बात है जब मैंने विजिट किया और 2011 में डच स्किन बैंक ने ही सपोर्ट करके उन्हीं के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने स्किन बैंक शुरू करी। पर स्किन बैंक की सारी सफलता हम लोगों की नहीं है, ये सफलता दूसरे जो समूह हम लोगों से जुड़े
1: जी। क्या आप उन समूहों को का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर?
0: जी, ये इसमें मुस्कान ग्रुप, इनके इंटरनेशनल आई बैंक भी इनके साथ है, रोटरी क्लब जिन्होंने बहुत पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोत्साहन दिया, बहुत से प्रोग्राम किए और उन लोगों का भी बहुत सहयोग है।
1: मैम, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी कि स्किन डोनेशन या त्वचा दान पर बात करेंगे और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्ते साथियों, तो हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शोभा चमनिया जी से, जो कि इंदौर में स्किन बैंक की HOD हैं और चोइथराम हॉस्पिटल में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सो आज हम उनके साथ बात करके स्किन डोनेशन का महत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चमनिया, आप हमें ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि स्किन डोनेशन क्या होता है, त्वचा दान क्या होता है और इसका महत्व क्या है, क्यों ये किया जाता है?
2: त्वचा दान हमारी त्वचा की 1/10 ऑफ द लेयर, 1/10 भाग जो त्वचा का है जाता है। इसका मतलब है कि बाकी जो थिक पार्ट है त्वचा का वो वहीं पर रहता है। तो जब हम त्वचा दान करते हैं तो हमारे अंदर के कोई भी अंग बाहर नजर नहीं आते हैं, यानी अगर हम पैरों से निकाल रहे हैं तो मांसपेशी नहीं दिखती है, और अगर हमने पीठ या पेट से ली है तो वहां से अंदर के अंग नहीं आते हैं। यह प्रश्न लोगों के मन में बहुत रहता है कि क्या हमने त्वचा दान करी तो हमारे अंग सब बाहर बिखर जाएंगे। इसलिए मैंने ये स्पष्ट करने की कोशिश करी कि वे अंग नहीं देखे जाएंगे। त्वचा दान हमेशा उन जगह से होता है जहाँ कि हम कपड़ों से जिस अंग को ढक सकते हैं, जैसे कि पैर है, पीठ है, यहाँ से हम लोग लेते हैं, उसके बाद उसको हल्की सी बैंडेज से कवर कर देते हैं और उसके बाद कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं कि इनका कोई दान हुआ है।
1: जी,
2: इसका महत्व क्या है? यह एक टेम्पररी ड्रेसिंग है। टेम्पररी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि गुर्दा दान है या नेत्र दान है, ये परमानेंटली हमेशा के लिए वहां रहता है और दवाइयों द्वारा उसका दूसरे के शरीर से परित्यक्त होना यानी रिजेक्ट होना उसको रोका जाता है। तो वो फंक्शनल होता है, और जैसे गुर्दा है तो वो गुर्दे का काम करता है, यूरिन बनाएगा और सारे जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं उनको निकालेगा। ये फंक्शनल ऑर्गन होता है और सालों तक चलता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी इसी तरह का, हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी तरह का है। पर त्वचा दान जो है वो केवल 2 से 3 सप्ताह तक शरीर में, दूसरे के शरीर में हम लोग किसी घाव के ऊपर प्रत्यारोपित करते हैं। प्रत्यारोपित करने का कारण ये है कि उसमें से जो पानी का रिसाव हो रहा है घाव से वो रुक जाता है, तो मरीज को पानी और उसके साथ के जो लवण रहते हैं उनकी जरूरत कम पड़ती है, और बहुत दर्द होता है इस घाव में। जले हुए घाव एक सबसे ज्यादा दर्द वाली बीमारी
1: जी।
2: तो इसके दर्द को एकदम कम करता है अगर आपने किसी दूसरे की त्वचा से उसको ढक दिया, और ढक देने से वो घाव भर जाता है, कवर हो जाता है, ढक जाता है, मतलब भर तो नहीं जाता है पर फिलहाल टेम्परेरीली वो बंद हो जाता है, तो इन्फेक्शन का भी खतरा कम हो जाता है। कीटाणु, यदि हमारे चमड़ी में कोई भी क्रैक है तो उससे कीटाणु अंदर जाते हैं। हमारी चमड़ी में कोई क्रैक नहीं है तो हम लोग कितनी भी इन्फेक्टेड चीज पकड़ लें हमें इन्फेक्शन नहीं होगा
1: जी।
2: तो ये स्किन डोनेशन की होती है, वो जले मरीज के लिए बहुत आरामदेह और जीवनदायी होती है
1: जी,
2: क्योंकि उसका जो कठिन समय है वो इससे गुजर जाता है, उसके बाद मरीज की खुद की चमड़ी प्रत्यारोपित की जाए।
1: क्या सिर्फ जले मरीजों के ही काम में आती है स्किन जो डोनेटेड की जाती है, या फिर कोई और भी बीमारियां हैं या कोई और भी कंडीशंस हैं जहां पर स्किन डोनेटेड स्किन का यूज किया जाता है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि मैं अब तक केवल जले मरीजों के बारे में ही बता रही थी
1: जी।
2: नहीं, इस तरह के घाव कुछ त्वचा रोग में भी होते हैं जिसमें कि पूरी स्किन के जो ऊपरी तह रहती है वो निकल जाती है और उसमें भी मरीज को इन्फेक्शन का खतरा होता है और बहुत दर्द होता है। तो उस तरह की बीमारियों में भी हम लोग ये त्वचा लगाते हैं
1: जी।
2: और बेड सोर यानी बिस्तर में पड़े रहने से जो पीठ में घाव हो जाते हैं, वीनस अल्सर्स, वेरिकोज वेन बीमारी होती है लेग्स की, उसमें भी घाव हो जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं उसमें लगाते हैं। और डायबिटिक फुट, नॉन हीलिंग अल्सर्स, कोई भी क्रॉनिक अल्सर है जो किसी भी तरीके से भर नहीं रहा है, उसको भी त्वचा लगा के कुछ समय के लिए उसका इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, घाव की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
1: शोभा जी, मरने के कितनी देर बाद तक हम स्किन डोनेट कर सकते हैं और क्या सामान्य मृत्यु या फिर कोई हॉस्पिटल में अगर है और उसकी मृत्यु, ये सिर्फ उस दशा में ही स्किन का दान किया जा सकता है या फिर घर पे जब किसी की मृत्यु होती है तब भी स्किन को दान किया जा सकता है?
2: बहुत अच्छे प्रश्न है। सबसे अच्छा रहता है यदि हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान होता है और जिनको, जिस टीम को ये त्वचा दान करना है वो टीम बहुत आसानी से वहाँ उपलब्ध रहती है और हॉस्पिटल में सारी चीज़ें एक प्रॉपर लेवल पे रहती हैं जिससे कि काम करने में बहुत सुविधा रहती है। तो कोविड के समय में हम लोगों ने, स्किन बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया था कि केवल अस्पताल में ही जो डेथ्स होंगी और जो कोविड नेगेटिव होंगी उनकी ही स्किन डोनेशन होगी, क्योंकि हमारे टीम को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उनके बचाव के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। अब जब कोविड कम हो गया है अपने देश में तो हम लोग RT-PCR या रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट है तो घर पर भी जाके ले रहे हैं
1: जी। कोविड के अलावा भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्किन डोनेशन की मनाही है या फिर स्किन डोनेशन नहीं की जा सकता?
2: जी, हम लोग जो रक्त से बीमारियां होती हैं जैसे कि इन्फेक्शन में, सेप्टिसीमिया में कीटाणु हो सकते हैं, जॉन्डिस एक दूसरे से जा सकती है, HIV एड्स की बीमारी भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो या कैंसर हो, उस तरह की कंडीशन में हम लोग त्वचा दान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि जो रिसिपियंट हो जिसे हम लोग स्किन लगाएंगे उसे इस त्वचा से कोई भी नुकसान पहुंचे।
1: जी, और मृत्यु के कितने देर बाद तक स्किन को लिया जा सकता है, दान किया जा सकता है?
2: सबसे अच्छा तो पहले 6 घंटे में ही दान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, पर यदि बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो 24 घंटे तक हम लोग त्वचा दान स्वीकार कर सकते हैं
1: जी। और ये अस्पताल में अगर मृत्यु नहीं हुई है, घर पे हुई है, तो भी त्वचा दान किया जा सकता है?
2: जी, उसके लिए वो डेथ सर्टिफिकेट लगता है और उसमें हम लोगों को 1 घंटा करीब हमारा रिस्पांस टाइम रहता है उनके एड्रेस पे पहुंचने का और करीब 1 घंटा प्रोसीजर में लग जाता है। फ्यूनरल से 2.5 घंटे पहले अगर हम लोगों को नोटिस दिया जाए तो काम करने में सुविधा होती है।
1: और दान करने के बाद जो इसके की बैंकिंग की हम बात करें अगर, तो कितने समय तक इसकी बैंकिंग की जा सकती है, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है?
2: इसे 5 वर्ष तक 4-8 degrees centigrade के जो नॉर्मल घरों में फ्रिज होते हैं उसमें रखा जा सकता है। इसे रखने का एक सॉल्यूशन होता है जो 85% ग्लिसरॉल रहता है, उसमें प्रिजर्व करते हैं।
1: ठीक जी मैम।
2: सिर्फ ज़रूरत हम लोगों को इतनी अधिक होती है कि हमने कभी भी कुछ महीनों से अधिक बैंक में स्किन रखी ही नहीं,
1: यूटिलाइजेशन
2: कर लेते हैं।
1: मैम, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अस्पतालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हर अस्पताल में स्किन डोनेशन हो सकता है या फिर जिन अस्पतालों में स्किन बैंक है सिर्फ वहीं स्किन डोनेशन किया जा सकता है?
2: नहीं, स्किन डोनेशन तो सब जगह किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी किया जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी किया जा सकता है, यानी गांव में भी किया जा सकता है। ये इस टीम को ट्रेन करना होता है और ये कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर कलेक्ट करके और फिर स्किन बैंक में वो स्किन को प्रॉपरली कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए भेज सकते हैं और स्किन बैंक में उसे बैंक किया जा सकता है। इंसान की त्वचा दान करने की इच्छा को इस तरह से पूरा किया जा सकता है।
1: जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। जीवन एक अनमोल उपहार।
1: छोटे से वृत्त अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम डॉक्टर शोभा चमनिया जी से बात कर रहे हैं जो कि इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल में स्किन बैंक की HOD हैं और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की HOD हैं। हम बात कर रहे हैं स्किन डोनेशन के बारे में, स्किन डोनेशन के महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर चमनिया, हम बात कर रहे थे स्किन डोनेशन डेथ के बाद होता है, तो सिर्फ डेथ के बाद ही स्किन डोनेट किया जा सकता है या अगर जिंदा रहते हुए हम डोनेट करने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं?
2: जिंदा रह के भी डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि आम तौर पे पहले जब ये बैंक्स नहीं थे तो छोटे बच्चे को यदि ज़्यादा जल गया है तो माँ या पिताजी कोई भी स्किन डोनेट कर देते थे। सरफेस एरिया के हिसाब से बहुत थोड़ा सा, एक थाई से अगर हमने पेरेंट की स्किन ली तो वो बच्चे को बहुत अच्छे से कवर कर लेती थी। तो ये बहुत कॉमनली होता था और अभी भी जिन स्टेट्स में स्किन बैंक की सुविधा नहीं है वहाँ पर अभी भी कुछ लोग लाइव डोनेशंस, लाइव रिलेटेड डोनेशंस करते हैं।
1: मैम, इंडिया में ये सिनेरियो क्या है, जो स्किन बैंक्स हैं वो कितनी जगह पर, कौन कौन सी सिटीज में हैं, अगर इसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएं?
2: हमारे यहाँ 15 स्किन बैंक्स हैं और ये शुरू हुए थे, सबसे पहला स्किन बैंक साइन हॉस्पिटल मुंबई में शुरू हुआ था। ये प्रिजर्वेशन का भी तरीका इनका क्रायो प्रिजर्वेशन होता था जो कि स्किन को वायबल रखता है जिससे कि वो लाइव रहती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। हम लोगों ने अब शुरू किया है वो ग्लिसरॉल प्रिजर्व स्किन है। टेक्निकली साइंटिफिकली ये स्किन वायबल नहीं रहती है और ये हम लोग केवल टेम्प्ररी ड्रेसिंग के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं, ये कभी भी बॉडी में परमानेंटली नहीं रह जाती है। ऐसा अनुमान है, पर मैंने कई बार देखा है कि इससे स्किन कवर हो जाती है। ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर दूसरा भी स्किन बैंक मुंबई में ही शुरू हुआ, फिर उसके बाद तीसरा इंदौर में था और उसके बाद महाराष्ट्र में कई जगह और दक्षिण भारत में बहुत जगह खुली। पीजीआई चंडीगढ़ में नॉर्दर्न पार्ट में वहाँ शुरू हुआ है और अब कई लोग आगे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले महीने में ही 2 और स्किन बैंक भी खुलने वाले हैं। तो भारत में सभी दूर लोगों में इस बात की, डॉक्टर्स में इस बात की रुचि है कि वे अपने हॉस्पिटल में स्किन बैंक खोलें जिससे कि वे जले हुए घावों को आसानी से या अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट कर पाएंगे।
1: जी मैडम, जो स्किन होती है कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि फेस ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो फेस से भी स्किन ली जाती है या मतलब स्किन लेने के बाद जो फेस से अगर ली गई है स्किन तो फिर फेस पर क्या इफेक्ट होगा?
2: फेस से कभी भी स्किन नहीं ली जाती है क्योंकि फेस इंसान की आइडेंटिटी है और हम लोग वो कभी भी विकृत नहीं करेंगे। तो चेहरे से नहीं डोनेशन होता है, इनफैक्ट एक्सपोज्ड किसी भी पार्ट से यानी पंजे से और हथेली से भी कोई डोनेशन नहीं होता है। डोनेशन केवल पीछे की तरफ का लिया जाता है और हमारे यहाँ क्योंकि पूरी तरह से कपड़े पहना दिए जाते तो लोअर लिम्ब दोनों पैरों की पूरी तरफ से त्वचादान हो जाती है, चेहरे से कभी भी नहीं होती।
1: जी मैम, कुछ मिथ्स हैं जैसे हमने जो बात करी अभी, एक और मिथ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में सुनने को मिलता है, हमारी सोसाइटी में सुनने को मिलता है कि जिस तरह से हम आए हैं दुनिया में उसी तरह से हमें दुनिया से जाना चाहिए, अगर अंग भंग हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट हम जाने से पहले देखे जाते हैं तो अंग भंग हो जाता है और उस वजह से हमें मोक्ष नहीं मिलता या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नहीं, ये मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का एक पैर कट गया तो वो अगले जन्म में एक पैर के बगैर पैदा होगा, या उसका एक हाथ कट गया। हम लोग एम्पुटेशन करते हैं बर्न पेशेंट्स का, इसलिए से जल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि उनका अगले जन्म में भी हाथ नहीं रहेगा। या जिसकी एक आंख में चोट हो गई थी और वो उस कारण से उसकी ज्योति चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे, तो अगले जन्म में भी वो ब्लाइंड पैदा होंगे। ये मिथ है, और इसका मोक्ष से, अगले जन्म की स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। अगला जन्म है भी कि नहीं है, इसकी भी सत्यता कहाँ से मालूम है, किससे मालूम है?
1: बिल्कुल डॉक्टर चमनिया जी, अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहती हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर दे सकती हैं उन्हें।
2: मैं केवल यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोगों को आगे आकर मृत्यु पर्यंत नेत्रदान और त्वचा दान इसलिए करना चाहिए कि इससे हम बहुत सारे लोगों को विजन ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं और उन्हें फिर से देखने की का मौका दे सकते हैं, और त्वचा से उन मरीजों का इतनी बड़ी सहायता करते हैं जो दर्द में तड़पते हैं और जो जिन्हें हम मौत के मुंह से बचा सकते हैं। तो इतनी बड़ी सहायता करने के लिए यदि हम मृत्युपर्यंत अपने किसी अंग का दान करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान होता है, और हम लोगों को ये सोच समाज में बढ़ानी चाहिए। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, करीब 90-95% तक की जनसंख्या त्वचा दान करती है मृत्युपर्यंत, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हिंदुस्तान का नाम भी उन देशों में शामिल हो जहां हर इंसान इस चीज़ के लिए आगे आए, जो मृत्युपर्यंत अपने त्वचा की दान करे, जिससे कि बहुत सारे मरीजों का फायदा होगा, न केवल जले घाव पर मेजर ट्रॉमा, बड़े बड़े घावों के मरीजों के दर्द से राहत का सबसे बड़ा मरहम है
1: जी।
2: इस निवेदन से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचारों से मैं दूसरों को सहमत कराने की कोशिश कर पाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने हमें ये टाइम दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें स्किन डोनेशन के बारे में जानकारी दी। इवन मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, इस जानकारी से मुझे भी बहुत फायदा मिला है, और मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा अंग दान, त्वचा दान, नेत्र दान और देह दान के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अगर आपके जो भी शंकाएं हैं आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके आपकी शंका का समाधान कर सकते हैं, बट इसका संकल्प जरूर लें, प्लेटफॉर्म भरें, आप www.organindia.org या फिर noto.government.in पर जाकर प्लेटफॉर्म भर सकते हैं, और डोनर कार्ड आपको आपके ईमेल पर मिल जाएगा। अगली बार हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खास मेहमान के साथ, और किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए हम जल्दी ही हाजिर रहेंगे आपके सामने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
2: थैंक यू सर जी।
3: आओ मिल के एक दिया जलाएं।

0: है राम का, रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंगदान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120364 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: क्लियर की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी अनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी अनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: फिर आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव,
3: टेस्टिंग,
1: टेस्ट।
4: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
6: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामना।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी
1: अरे कभी कभी अरे कभी कभी अरे कभी कभी
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: अपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर
6: रहा? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

तुहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तुहां सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए इन्हें सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला से कने तुहां सारिया ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता शो तो बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ देने कार्यक्रम चल गए सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न इक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना आंटी दी मैं है एक आशोतों बढ़ते ना कार्यक्रम चल गया इन्हें सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला से कने तुहां सारिया ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। ता शो तो हम बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कने सुनदे निक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न इक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला करे तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोताओं अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने पंदी।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को अर्घ्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: अपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका

0: जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
1: सूरज।
2: हाँ बोल।
1: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
2: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
3: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
2: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा।
3: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
4: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
5: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
4: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
5: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में एचआईवी की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए एआरटी सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। एचआईवी के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: से सुनना थी।
1: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
0: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
1: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
0: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
1: कब्ज हो या काला मल,
0: धीरे धीरे होगा हल।
1: भूल जाओ अगर गोली खाना,
0: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
1: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
0: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकालने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जा के कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कुटवा और हम सचिन कपूर कार्यक्रम लेकर हाजिर बुझको आइंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है श्रोताओं तुंदे? उम्मीद करनो कि तो है सब खरे बुने ठीक बुने और अपने घरे खुश बुने हिन तंदुरुस्त बुने हिन श्रोताओं। बहरहाल धर्मशाला रा मौसम के सो जाने देंदे न श्रोतो, लेकिन मौसम जानने तो पहले गल बलना चाहनो कि जो कि बर्खा अंदर है बार बार आके ऐसो सिजू करते हैं, बुखार बीमार के ऐसो बार बार बच्चू करते हैं, तो इस बीच ऐसो अपना ख्याल के ऐसो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश मंच श्रोतो बड़ा ही खूबसूरत और शांत आध्यात्मिक हिल स्टेशन आइंदा धर्मशाला श्रोतो, जो कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला री गोद माँ की असोबसुरा। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तिब्बत संस्कृति, गदयाली संस्कृति और बेहतरीन मौसम वास्ते की असो दुनिया भर में मशहूर है, जिया कि यह सब जानते हैं श्रोतो, है ना जी। लेकिन श्रोतो हम तो दसना चाहता कि जो गल है सो दसना चाहता है, ये तो चलो मैं दसी तो तुसो इस समय धर्मशाला रा मौसम की सो की है बनता, ये तुसो की सो शेयर करना चाहते ने है। इस समय रे गल करूँ श्रोताओं तो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो मौसम बन रहा है, न मेरी गल करूँ तो 90% रे आसपास के सो नमी बन रही है श्रोताओं, और बिल्कुल 90% आस पास की सो नमी बन रही है, विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक है श्रोताओं। यह मौसम रे जानकारी बहरहाल आगाज के सो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी बंदा श्रोताओं आगाज करना, तो आगाज असो ज़रूर करना है प्यारे दे बेहतरीन गीत सोगी, तो सब श्रोता सोगी जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो नहीं सकते हैं। 7018879 पर नंबर एक मौके फिर यहाँ शेयर कर लूँ हाँ, 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। बहरहाल दत्ते हैं जन्माष्टमी श्रोताओं, तथा सभी जो जन्माष्टमी रही आज जी अज की असो अजताओं की असो बड़ी बड़ी बधाई बून मुबारक बून सभी जो सभी उन्ने आले जो सभी श्रोतागण जो। आइया फिर आगाज भी तो कुछ इस प्रकार रहे कि असो बूना चाहता श्रोताओ, है ना। तो आई थिंक होप सो सभी छुट्टी बोने हैं, गवर्नमेंट छुट्टी है तो सभी तू छुट्टी बोने हैं श्रोतों, सभी स्कूल है सभी इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आइए जी आगाज कार्यक्रम रहा इस गीत होगी जरूर बनता है श्रोतों, क्योंकि आज 12 बजे में की जन्माष्टमी शुरू हुआ

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো সবই টিউন গুরু আর কার্যক্রম এই সময় দি আপনি গপ্পা কেন আসো বিলকুল লাইভ চল রই তন্দে রেডিও সেট মা বহুত বহুত স্বাগত আগ মকে হার্দিক অভিনন্দন সবই হুনে আলে রা সবই শ্রোতাগণ রা আই শত কার্যক্রম জো আগো বড়ন্দে না আর আগলি জানকারি হোগি তু সুরুবুরু করবন্দে হিন হিমাচল প্রদেশ মা সরকার সার্বজনিক পরিবহন ব্যবস্থা জো মজবুত করনে বাস্তে কি আসো 1000 ইলেকট্রিক্যাল और बस अगे असो ले छू कर दे हा श्रोतों और तुसो दसना चाहता श्रोतों बिल्कुल खरीदने भी बसा खरीदने भी दिशा मंज हागू के असो बड़ू कर दे सरकार इस समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू है विधानसभा में बल्लो कि सरकार पर्यावरण संरक्षण जो ध्यान में रखते डीजल बस अभी जगह इलेक्ट्रिकल बस अरी और के असो बड़ू कर दे हा सरकार है कि असो पर्यावरण संरक्षण रे वास्ते इलेक्ट्रिकल वाहन अरी और जाने गाने थू किया सो पहले ही बजट में घोषणा किया सो कर रही है सो इलेक्ट्रिकल बस अवे सोगे 12 साल रा रख रखाव भी किया सो शामिल है दिल्ली सरकार री औरतों खरीदी गई है बस श्रोतों अगर है तुलना करन जो दिल्ली सरकार है बस खरीदू रही थी और है खरीदू कर देने वह प्रदेश सरकार खरीदू कर दी है इंडिया बस जो था अस हो गया सो ये बस कम दर पर किया सो मुड़ कर दी यानी कि घट दाम पर के न सो मुड़ कर दी इन श्रोतों ਅਤੇ ਵੇੜੀ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਔਰ ਤੁਹੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈੱਟ ਪਰ ਵੇੜੀ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਚ ਔਰ ਆਊਂ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਜੋ ਉਸ ਕਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਅਸੂ ਸੋਗੇ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਸੋਗੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਸੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਦੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦਾ ਹੈ श्रोतागण के अंदर कॉल करो कर दिन ज़रूर कनेक्ट कर ले जी 708-8870-9 पर चलिए फिलहाल इंजॉय करें दे तू सब भी जो ये गीत है

0: 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर दे नैया इन द श्रोतागण आ सो के कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन वल्लन दिन नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक ने?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
0: अच्छा कौन वल्लन दिन और कड़ी थों वल्लन दिन?
1: सुनील कुमार बोल रहे हैं सर जी।
0: समीर कुमार?
1: हाँ जी सर जी।
0: अच्छा और समीर कुमार जी ठीक ठाक? राजीव बाजी
1: सब बढ़िया सर जी। राजीव बाजी सर जी
0: कर करे लगुरन?
1: बस तो प्रोग्राम सुना थे सर जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर
0: क्या
1: जी।
0: बात। चलिए ठीक है जी। कौन दिन गीत होना पसंद कर ले?
1: वंदना दी मान दी आवाज सुनाई दे सर जी गाना।
0: हाँ जी कौन दिन जी?
1: माता दा भजन सर जी मंदिरां दा नजारा।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी।
0: ठीक है जी जरूर होना ले तुसु ये गीत
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी।
0: ठीक है
1: नमस्ते
0: जी।
1: सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: नमस्ते सर जी।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही है। तो ये श्रोतो अगली जानकारी क्या ने आसो भी तुस हो गया है रूबरू करवाई देना। चलिए सदों अगली जानकारी रही और क्या ने सो बढ़ते हैं तो सब हूँ करते हैं। इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जो होस्ट करूँ करता है अक मौके फिर ही पुनः हुनने आए रहे जितने भी गणमान्य व्यक्ति असू हूँ कर दे नेहरू कर दे त्यारा सभी रहूँ तहे दिल तो स्वागत करनू अभिनंदन करनू है। आइए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी होगी तुसो रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगे बुधवार जो हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड री बैठक री अध्यक्षता की आसो करे हैं श्रोताओं और अध्यक्षता करते वक्त वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग रे कल्याण रे वास्ते की आसो प्रतिबद्धत वैसों की कार्य की असो करू कर दे हा तिन्या बल्लो अशोतों की पिछले 3.5 साल अंदर इस दिशा में अनेक योजनाएं बनी कर गया सो धरातल में उतरी हीन जठेरा लाभ किया सो पात्र व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति तक किया सो पूजना सुनिश्चित हा। सुखु ए बल्लू अशोतों की राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर तो प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ करने के असो चले है जटेरे तहत लगभग 2 लाख अति निधन परिवार जो कि असो 2300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिला जो 1500 रुपया प्रतिमा के असो प्रदान करना है यानी कि मिलना है। सीएम ए भी बल्लू हा श्रोतों कि इतिमा से 90,000 ऐसे परिवार हैं जिन्हें हाल तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ किया सो ना मिलो हा। मुख्यमंत्री ए भी बल्लू हा श्रोतों की राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती जो बढ़ावा दे चुकर दे हा और प्राकृतिक खेती वे उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किया सो मुड़ कर दहा। इस प्रकारों की जानकारी रहा सिलसिला ये चले रहना है। इन द अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं?
2: भाई आओ मुगलु दा कड़ियाने हो।
0: अच्छा क्या ना जी तुम दा?
2: मैं ना सम्मू भाई।
0: अच्छा सम्मू सम्मू।
2: हाँ जी सम्मू कपूर।
0: समू कपूर भाई कौन दिन गीत सुनना पसंद कर ले?
2: भाई आऊं सुनना जांदा बेड़ा दे पालणु
0: बेड़ा खेरिया पालणु ते इंदा की ना।
2: हेलो।
0: चलिए समू जी, जी, जी जरूर जरूर तुंदी फरमाइश पूरी कर ले है।
2: हां एड़ी बेरो या बैठ मतलब 10 12 जने ये बोलदे फोन करा बोलू गाना लाई दे बोलू इंदा फेवरेट गाना।
0: अच्छा 10 12 जने कौन कौन ने जी?
2: बड़ा
0: खूबसूरत ग्रां जी तुंदा।
2: हां जी हां जी हां जी भाई। मार करी इन करी घूमना ए साइड भी।
0: जरूर इले जी, जरूर इले।
2: जी
0: बड़ा प्यारा ग्रह होता, बड़ा नजारा इंदा, इंदी कूल जमाता धड़ी आगू ना जी गिची करी,
2: अच्छा
0: कंड
2: अच्छा
0: कंडी
2: भाई,
0: आला ऊपर गिची करी,
2: अच्छा अच्छा
0: जड़ी चमुंडा माता जो प्रो ना कुंदे पुरानी चमुंडा जो
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा
0: तड़ी के मगर मुगर के ने तड़ी इंदी कूल जमाता जो थल। हाँ
2: अच्छा वो पार क्या सोते थे, हाँ जी हाँ जी
0: जी हाँ जी
2: मारने से यानी गप सप यानी इस बारे में और क्या भाई,
0: ठीक है
2: भाई
0: जी।
2: सारा बड़ी यहाँ थोड़ा और क्या
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, ये धंधा
2: है,
0: अपना गादा कार्यक्रम है जी, भाईचारा तो बढ़ाना ही थी है ना जी।
2: भाई
0: और कोई दूसरो लगता शंभू जी कि इंदा कोई मतलब नौजवान ऐसा जो अपने आप जो प्रमोट करना चाहता वो है ना, तो सो
2: हाँ
0: ये ली ची
2: जी
0: सकदा इंटरव्यू दे सकदा हा,
2: हाँ
0: और तेरी पांच
2: जी
0: लाख तो ज़्यादा के सो रीच हा, 5 लाख तो ज़्यादा मनो के सो रेडियो जो हूँ देना,
2: हाँ
0: और
2: जी हाँ जी
0: अपना
2: हाँ
0: इंटरव्यू सो दे सकदा हा किसी भी
2: तो रोज
0: क्षेत्र
2: ही
0: में।
2: सुनते हैं भाई, डेली सुनते हैं, आज 12-13 जने ये सब बोलने, बोलू गाना सुनना, बोलू भाई फोन करा, बोलू मिलू
0: अच्छा
2: करी तो भाई फोन
0: क्या बात है,
2: नहीं।
0: शंभू जी कदी मेरा काम तुसे जरूर करें, जहने भी तो है इस प्रकार होगी महफिल में बैठ दहिन ता तो है अक वीडियो की सो बनाई करे मुंजो इस नंबर पर, जिस नंबर पर तो है कॉल करे इस नंबर पर जरूर सेंड करें है
2: हाँ जी हाँ जी भाई जी, जरूर कर ला भाई जी, हाँ
0: ना जी। ये हो
2: जी हाँ
0: सकता
2: जी,
0: थोड़ी देर बाद ही करीन तो है जाने हम बालना लगू
2: करी
0: रो।
2: ले भाई जी, निकालनी है करी ले, ठीक
0: ठीक है शंभू भाई, तुम्हारी फरमाइश है जरूर पूरी कर ले।
2: है भाई जी, ओके हम,
0: ठीक है जी,
2: जय श्री
0: धन्यवाद,
2: भाई जी,
0: जय शिवा
2: जय
0: जी, जय केलिंग बजीर।
2: जी।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कैंसो चल रही ने। सुनील कुमार जी कमेंट करू कर दे, नमस्ते सचिन भाई, तबीयत ठीक नहीं लगते, हम बड़ोई थो हुआ मेरा गाना होना ही दिया बहादुर भारद्वाज री आवाज़ मंज सरीक गाना। सुनील कुमार जी तभी तरह ते ही है स्यापा यार। पर चलो जी तक हार नहीं तीन तक रह भी ना बंद है, तुंदी तुंदी फरमाइश जरूर है पूरी कर ले, बने रहे तो सब बार जैसा सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही, और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे आइया धीरे धीरे फरमाइश रहा दौर के सो पूरा करते हैं श्रोताओं, लेकिन चलते तू सब भी श्रोता जो इस भजनारी किनारी।

শোধ এফ এম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা 2020 টিউন কর রো রে কার্যক্রম ইন দি আপনি গা পাগান সো বিলকুল লাইভ চল রহি হিন কার্যক্রম মান জিন দে বহুত সারে শোধ গেন সো কল বে করু কর দে থি আর আপনি ফরমাইশ গেন সো সব ইয়ে দিতি ভি হিন তো জরুর পুরি করনে রে ইন দি জো শক্তিয়া সো সো জরুর লানে কি पूरी जरूर बुझे अच्छा बहरहाल तो सब श्रोता भी बनी सकते हैं सोगे 7018879 पर इसी सोगे श्रोतों अगली जानकारी तो हो गया है रूबरू करवंदे हिन बरखर कहर श्रोतों और कर खनगर का किया सो इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़े में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया सब चुकर दहा श्रोतों जी बिल्कुल मूसलाधार बरखा तो किया सो नुगरोटा सूर्य क्षेत्र में किया सो जमकर कहर भरपू हर्ष होता हूँ भारी बरखा तो कई स्थानों पर जल भराव बुझगो हर्ष होता हूँ और सड़का पर पानी किया सो चलिया और तालाब ही है किया सो जमे बिगो लोक निर्माण विभाग रे उपमंडलीय कार्यालय पविसर में पानी के सो भरी गोश होता हूँ वेल मार्गरी और गाने वाले सड़क पर बरखारा पानी बहने थों किया सो तो मनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हिन और परेशानी का सामना किया सो मनु वो करना पे करता हा बहरहाल और इसी सो की सो तो अगली जानकारी के सो तुसो शेयर करते हैं कांगड़ा में 45 इलेक्ट्रिकल बस सके सो बदलो सफर रा अंदाज बिल्कुल हिमाचल जो ग्रीन हिमाचल बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार है कि सो इलेक्ट्रिकल परिवहन पहल अब धरातल पर के सो नजरीना लगे है छो तो जिला कांगड़ा में वर्तमान में 45 इलेक्ट्रिकल बस सके सो विभिन्न रूटा पर यात्री जो सेवाएं दे चुकर दी हैं सीसीटीवी तो लेंस इलेक्ट्रिकल बस सुरक्षित आरामदायक पर्यावरण अनुकूल और कम शोर सो के संचालित हुई हिन छो तो बस रहे दोनों दरवाजे पूरी तरीके हो गए श्रोतों सो बंद भुने थो बाद किया बंद भुने बाद ही किया ठेरा संचालन शुरू हुंदा है इलेक्ट्रिकल बस अथों परिचालन खर्च माँ भी किया सो लेखने कमी आई है श्रोतों जड़ी डीजल बस है वह संचालन पर करीब 25-26 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च इंदा थो तटी इलेक्ट्रिकल बस सारा खर्च लगभग 11-12 रुपये प्रति किलोमीटर की असो इच्छु करता है कांगड़ा जिला में धर्मशाला नगरोटा बगवा देरा पालमपुर पठानकोट बैजनाथ जसूर और कांगड़ा में करीब 6.35 करोड़ रुपये भी लागत हूँ ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें छतों तटीय जसूर माफ कर तटीय जयसिंहपुर और शाहपुर में करीब 8.26 करोड़ रुपये की लागत हूँ नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित भूए हिन शतों इस प्रकार सो के कार्यक्रम ये चली रहना है तो सब बन रहे सम FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो की और आना चीज सचिन कपूर है कार्यक्रम जो होस्ट करू करता है आइए जी कार्यक्रम जो आगे बढ़न दिन और चल दिन कनकंडियाला गनारी और तैयारी फरमाइश में हुन दिन प्यारे दे गीत

0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार। आए ठीक ने तो है बल्ला जी?
0: ठीक जी ठीक तो है ना।
1: हाँ ठीक ना है भी
0: बार
1: वर्क का जी जहने वो अंदर आ तो तहने तो लग रही थी तो आप जो क्या पता फिरी
0: अच्छा ठीक ठीक अच्छा
1: जी
0: अभी
1: कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन।
0: सर लग लग दी खने रहा हूँ।
1: अच्छा सरला जी खने रहे हो बल्लून देन
0: अंदी
1: तो खने रहे लग रही जी बरखा।
0: नारे पहले तो बड़ी बड़ी बजी नहीं पर आज उन जरा सुन दे नहीं लग रही फिर हल्की हल्की लग रही आज बोर बोरी।
1: अच्छा
0: हाँ जी खनारा तो कुछ पता है मेरा बुआ ना बुआ पर खनारा बर्फ बंदे है।
1: खनारे बरखा बूंदे बूंदे ये
0: हाँ जी हाँ
1: बड़ा मजेदार किस्सा खनारे रा। अब बोले भी है ना
0: जी
1: को इंदौर ना गए महाराज जी रे चरना में जरन दिन था
0: प्यारी दया।
1: बरखा रे देवता निंदे दा दया त्यारे
0: हाँ
1: ठने
0: जी
1: हेले रख दे तुसु।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: जी जनाब कुण देना की थोड़ना तुसु।
0: खरगुडिया लगाना मैं बोर तू मेरी खरगुडी वाली है।
1: कमेंट जी कौन दिन है जी अबे बल्ला।
0: खरगुडी लगाना है मैं बोर तू मेरी खरगुडी वाली है। हाँ
1: आऊं भोर तू मेरी फरगुड़े फरगुड़े चलिए जी फरगुड़ी तो अब तक कड़ी नहीं है ना जी मोड़ लिया सु फरगुड़ी तो उन्हें ले तो सुवे है जरूर।
0: कोई नहीं जी कोई नहीं मेरी फैन है तुसी ने। हाँ
1: चले जी सर्चिंग का तोबले है।
0: जी तो आके तो सोगी रिक्वेस्ट भी थी है तो आके आम मैं रखा तो है
1: आलम बिल्कुल दे जी हाँ
0: मेरे घर आला कर रहा तुसी यो फोन पे तो गाना न लो तैयार होते थी बाद को फोन ही ना कर गो नदी। हाँ
1: अच्छा जी
0: जी
1: कई वक्त क्या बंदा ना एड़ी जी बस ससू और रेडियो मन तो आसान लगता ना कि सिर्फ बल्लूंदे रहो गाने लाऊंदे ने पर
0: हाँ जी
1: एड़ी मेरे हकरी हगू सो गाला चूर हकरी करना पे अंदी ना कदी कदी
0: हाँ
1: पूछ गंदा
0: जी
1: स्केप ना जी।
0: हाँ जी
1: तुस आऊँ या जनरली दसो कि अक साइड मेरे लैपटॉप अक साइड मेरे जाती हूँ बल्लूंदा सो माइक का जत्थो माइक होल्ड करना सो दो हाथ तारा
0: जी
1: भी लगुरेन मेरे आगू ट्रांसमिशन अपना मीटर मंज मीटर रखा तो है ना तेरा बलने रहे तड़ी भी
0: हाँ
1: हेरना
0: जी
1: पैंदा सामने जो खबर है ना सो भी हेरना पैंती इस साइड खबर कंप्यूटर रख रही सो भी हेरना पैंती ना इस साइड फोन है भी
0: अच्छा
1: हेरना पैंता ता बहुत सारी अग टाइम में बहुत सारी चीज़ आ गई सो वो सब भी आर जे खास करे जो लाइव कार्यक्रम होंगे इतनी में करना पैंती ने कदी
0: जी
1: कदाए बुचगन दस्केप और बहुत सारे मनु
0: अच्छा
1: कहने सो बुरा मन निगन दिन के आ इन दी फरमाइश।

0: है, फिर गुड्डी रहेगा यार।
1: अच्छा मंजू यहाँ सामने हो जूनागढ़ दा कुंडी ने गीत बोला फिर भी हम तो अपने कोशिश कर ला, और अगर ना मिलो तो ठहरी जगह कोई और ऑप्शन दे दिया सू जी।
0: अपनी तरफ सामना आई है और कोई
1: चलिए लेकिन तुंदे फरमाइश के सो इस गीत तो हम बाद में ना जी जरूर पूरी कर ले है।
0: ठीक है जी, ठीक है,
1: ठीक है जी,
0: ओके दीदी,
1: धन्यवाद धन्यवाद। और
0: धन्यवाद।
1: अपने पति जेब अधरनी पति जेब पति देव जियो मेरी तरफ रहो सॉरी बोलने जी कि कदी फरमाइश ना हुई वो तुंदी पूरी तरह
0: ठीक
1: ना
0: है ठीक है, हुण बंदे सो
1: जी जनाब सॉरी
0: तुसी
1: जी, बड़ा इड़ी चूर हाकरी करना पेंदी, दो हाथ करने पेंदे सब घटे गंदे।
0: अच्छा अच्छा कोई नहीं, ठीक
1: ठीक है जी धन्यवाद
0: है, ओके दीदी।
1: जी। सो तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहे, और कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा के ना सो चल रही हैं, बिल्कुल लाइव है कार्यक्रम के सो चल रहा है शो तो। और आइए सरीका रगीत बल्लू तो होने लंदन बहादुर भारद्वाज री आवाज़ में ये गीत, और इतों बाद शो तो अगली जानकारी माफ़ कर अगली फरमाइश की सो पूरी कर ले।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुड रो और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप अगेन सो लाइव चल रही। चलिए थोड़ी करी और आगो चल देना और फरगुटी था मोड़ो ना कर दिया सू कड़ी लिया बड़ी तो पीली लेकिन इन दे श्रोता सो के कनेक्टेड इन पुछ दिन कौन बल्लू दे। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बल्लू दे और कड़ी तो बल्लू दे।
1: कृति बल्लू दिया
0: कृति
1: नरवाणी।
0: अच्छा कृति जी का स्कूल है पढ़ देन कौन दिन क्लास में पढ़ देन
1: कस में स्कूल पढ़ देन।
0: अच्छा आ कौन दिन की थोड़ना तो सुजी
1: आओ होना
0: गिरी फेरी नच्चे भर मोरियो। ठीक है जनाब जरूर तो सुए गीत होना ले है ना जी।
1: हाँ जी ठीक है।
0: ठीक है जी धन्यवाद। तो ये श्रोता हूँ फिलहाल जो गीत हाथ या दस थो सो है तोप हुआ लेकिन नया मुलदा ता तैयारी पसंद मा आइए प्यारे दे गीत के सो है सब होने लेंदे हैं ना नसी को फरगुड्डी ता मुड़े नहीं असू लेकिन इस गीत तो कोशिश कर दे कि तैयार दिल थोड़ा करेगी असो खुश पूछेगा। अच्छा

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন। तो है सभी ट्यून कर और फिलहाल इजाजत लेने में समय बच गया। आखिरी फरमाइश सो पूरी कर दें, गंदे गंदे बोलना चाहूँ, माँ बाप री सेवा जरूर कर, शोतों प्रकृति रख ख्याल जरूर रखा और प्यार तो बड़े करेगी। सो ऐसा दुनिया मंच कुछ भी नहीं है, नफरत सिर्फ और सिर्फ जलन दिया, फूक दिया और घर बर्बाद कर दिया, रिश्ते बर्बाद कर दिया। प्यार एक ऐसी चीज़ है शोतों जो हमेशा यादगार रहता और दिला मन समंदा और अच्छा खासा रिश्ता निभंदा।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। सड़क थोड़ी तो भरनी होगी, दोबारा बनाने की लागत की 5 गुना रकम। प्रदेश सरकार जल्द खरीदेगी 1000 इलेक्ट्रिक 200 हाइड्रोजन बसे। साई धर्मशाला में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल्स 7 से 9 तक। 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव जीती आशा वर्कर्स पूरा कर सकेंगी अपना कार्यकाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितंबर को जिला व उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहा है। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर मिहुल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में बैंक से संबंधित श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वे संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माल रोड शिमला स्थित सहकार सदन के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस नवीनीकरण कार्य पर 2.85 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत इमारत की हर मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। इस नवीनीकरण से पुराने भवन को एक नया आयाम मिलेगा। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सहकार भवन के नवीनीकरण कार्य को 15 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बहुमंजिला इमारत का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है। यह प्रदेश भर में आधुनिक और भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना के तहत मेज़नाइन फ्लोर पर आधुनिक वर्कस्टेशन और केबिन पार्टीशन तैयार किए जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन वर्कस्टेशन और एडवांस स्क्रीनिंग एरिया बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसमेंट 1 में कॉन्फ्रेंस हॉल वर्क स्टेशन, बेसमेंट 2 में बच्चों के लिए समर्पित क्रैच क्षेत्र, बेसमेंट 3 में आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और एक व्यवस्थित स्टोरेज एलिवेशन का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा या जब्त वाहन छोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पे हिमाचल प्रदेश में सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों की ओर बढ़ रही है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने की पहले ही बजट में घोषणा की है। इलेक्ट्रिक बसों के साथ 12 साल का रखरखाव भी शामिल है। दिल्ली सरकार की ओर से खरीदी गई बसों की तुलना में प्रदेश को ये बसें कम दर पर मिल रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए 7 से 9 सितंबर तक ट्रायल होंगे। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों को 7 सितंबर सुबह 9 बजे साई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होगा। चयन के लिए आयु वर्ग के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई तय है। 1 जनवरी 2011 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 172 सेमी 1 जनवरी 2010 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 174 सेमी 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 176 सेमी और 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले जन्मी खिलाड़ियों के लिए 180 सेमी कद अनिवार्य है। केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक JP शानी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोच, खेल किट, आधुनिक उपकरण, शैक्षणिक खर्च, भोजन आवास और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार की हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी गई हैं, जिसका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सुखू ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत लगभग 2 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इनमें से 90,000 ऐसे परिवार है जिन्हें अभी तक किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चहत दी है, आशा कार्यकर्ताओं को राहत दी है। कोर्ट में निर्णय आशा कार्यकर्ताओं को कहा कि जो आशा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में चुनी गई हैं, उन्हें नियमानुसार कार्यकाल पूरा करने की अनुमति

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं श्रोताओं, और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम लेकर आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो गई है श्रोताओं, और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े ज़रूर होंगे। जो भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि जल्दी से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ जुड़ने के लिए ट्यून कीजिए 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं, जिसका समय रहता है अब से लेकर 8 बजे तक का, यानी कि शाम को रोज़ाना 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी सभी आरजे दोस्तों के साथ। और आज का ये अंक आपके समक्ष लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं, जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते हैं, बहुत सारी बातें हम आपके साथ करते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत भी, और इन्हीं गीतों को सुनने के लिए आप लोग तैयार बैठे होते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात श्रोताओं पहले ये करेंगे कि मौसम जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो है वो बारिशें थोड़ी सी कम हो रही हैं, दिन में एक समय बारिश हो रही है, लेकिन हम ऐसे में यही कहेंगे कि आजकल जो है वो वायरल जो है वो चला हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि जब भी ये मौसम अपना रुख बदलने लगता है या थोड़ा सा अपना मिजाज बदलने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका असर देखने को मिलता है। श्रोताओं, आप सभी को बता दें 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो हमीरपुर से जितने भी श्रोता हमारे साथ ढटवाल की आवाज़ से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ के श्रोता भी हमारे बिल्कुल ठीक होंगे। श्रोताओं, हमारे श्रोता कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हों वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अब शुरू करते हैं गीत के साथ भी, क्योंकि बातें हमने शुरू कर दी हैं और जब तक और बातें होंगी हमारे बहुत सारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना एक छोटा सा मैसेज ज़रूर हमें डाला कीजिए, ताकि हमें भी लगे हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, और अगर कोई सुझाव भी वो देना चाहें तो दे सकते हैं। श्रोताओं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विचार के साथ। तो आज का विचार है श्रोताओं, जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है वास्तव में वही सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। विचार को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है वास्तव में वही सबसे ज़्यादा तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है वास्तव में वही सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। विचार करने लायक ये विचार है, और इस पर ज़रूर विचार भी कीजिएगा श्रोताओं। तो चलिए, इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है और अब आपको इंतज़ार रहेगा गीतों का। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और गीतों का ये सिलसिला 8 बजे तक चलेगा। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और ये प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं ज्वेल थीफ फिल्म से, आवाज़ें दी हैं इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ श्रोताओं, और आशा करेंगे कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही प्यारे गीत आप तक पहुंचाए जाएंगे श्रोताओं, और गीतों को सुनने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत गीत के साथ हमने कर दी है, और साथ

साथी श्रोताओं, हम रोज़ाना कोई ना कोई बात आपके साथ करते हैं, लेकिन देखिए कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आते जाते हमें मिल जाती हैं और सोचते हैं कि हम जाकर आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो थोड़ी सी बात हम करेंगे रोड पर चलते समय क्या क्या होता है, और शायद आप लोगों ने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा। शुदा रोड पर जब हम चलते हैं तो कई बार हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी लेन को छोड़कर, यानी कि अपनी साइड को छोड़कर दूसरी साइड से जल्दी निकलने की जल्दबाजी करते हैं, और बेशक उनके सामने से कोई और गाड़ी वाला या स्कूटी वाला आ रहा हो, वो जिसका वो रास्ता है फिर भी। और ऐसे में होता क्या है कि जो तो इंसान अपने रास्ते पे ठीक चला हुआ है वो भी थोड़ा सा डर जाता है, और डरने वाली बात भी है क्योंकि रोड पर जब हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी डर रहता है कहीं गिर ना जाए या कुछ ऐसा कोई घटना ना हो जाए। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता थोड़ा सा ट्रैफिक में है या आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप देख के दूसरी साइड आप अपने आप को टर्न कर सकते हैं, क्योंकि सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसे भी कोई नुकसान हो सकता है, आपको भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार रोड पर किया है और आप लोगों को भी ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिली होंगी। दूसरी बात श्रोताओं, जो तो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं उन्हें देखकर छोटी गाड़ी वाला जो है वो थोड़ा सा साइड अपने आप ले लेता है कि कहीं हल्की सी भी टक्कर हमें ना लग जाए, लेकिन वहीं बड़ी गाड़ी वाले जो होते हैं वो बहुत सेफ़ रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटी सी गाड़ी की बात तो नहीं करेंगे, स्कूटी की बात करेंगे या बाइक की बात करेंगे, छोटी सी जो स्कूटी या बाइक वाला है वो अगर हमसे टकरा भी जाएगा तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। तो जब ये चीज़ें देखने में आती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जिसका पलड़ा भारी होता है या जिसके पास बहुत ज़्यादा, इस बात को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम ही हम हैं और बाकी सब कम है। तो श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो बात रोड की हम कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है। हमें हमारा बड़प्पन उसी में है कि हम अपना बड़प्पन लोगों को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दिखाएं, और अगर हम अपनी करेंसी से या अपनी गाड़ी से या अपने ओहदे से अपना बड़प्पन दिखाएंगे तो वो बड़प्पन नहीं रह जाता है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं ये कई बार हमारे माइंड में आती हैं जब हम अपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि सभी को एक पलड़े पे ही तोलना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, और असल में इंसानियत यही है, कहती है कि हर किसी को प्यार कीजिए, हर किसी को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। और हमेशा हम ये कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों की चिंता करता है, जो दूसरों का सोचता है, उसका सोचने के लिए परमात्मा या ऊपर वाला ज़रूर बैठा है, और वो सोचता भी है, करता भी है। इसलिए अपने जो कर्म हैं वो हमें सोच समझ कर ही करने चाहिए, कहीं हमारे किसी काम से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है, और हमारी इन बातों के साथ जुड़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। अगर आपके पड़ोस में भी अगर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है और कहीं दूर से आपको आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि कान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी हमें सुन सकते हैं हमारी ऐप के ज़रिए, और अपने रेडियो को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ज़रूर सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो श्रोताओं, बातें और भी होंगी लेकिन फ़िलहाल किंग धर्मशाला, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो श्रोताओं, बातें और भी होंगी लेकिन फ़िलहाल के लिए फिर से आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। क्रांतिवीर फिल्म का ये गीत श्रोताओं हम लेकर आए हैं, और आवाज़ें दी हैं इस गीत को अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय श्रोता हूँ आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में आपने सुना अभी ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन आज ख़ास बात जो है वो बारिश पर ही करनी है थोड़ी सी, क्योंकि हल्की बारिश जब होती है और बारिश के बाद जब पहाड़ों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही राहत मिलती है, खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। श्रोताओं, आपने भी कभी ये चीज़ गौर की है, अगर आप कहीं रहते हो और आपके सामने कोई भी पहाड़ सामने नज़र आ रहा हो, घर नज़र आ रहे हों, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हों और हल्की सी बारिश जब होती है तब तो ऐसा लगता है कि धुंध पड़ी है और कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बारिश हट जाती है, छट जाती है, तो वहाँ का नज़ारा देखने वाला होता है। हर चीज़, चाहे वो घर हों, बिल्डिंग्स हों या पत्ते हों, पेड़ हों, सब मतलब इतने साफ सुथरे सुंदर लगते हैं कि वो नज़ारा देखकर मज़ा आ जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम ज़रूर यही बात करने वाले हैं कि बारिश के बाद हिमाचल के पहाड़ हमें क्या सिखाते हैं। खैर, वैसे तो श्रोताओं अगर देखा जाए तो ये पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, चाहे बारिश से पहले हों या बारिश के बाद हों, लेकिन हाँ, बारिश के बाद वो कुछ ज़्यादा इसलिए सिखाते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे थपेड़े हमें भी मिलते हैं, हमें भी पड़ते हैं, बहुत कुछ हमें उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, और उन उतार चढ़ाव के बाद जो लाइफ हमें मिलती है वो हमें सच में अच्छी लगती है। उसी तरह से ये पहाड़ जो हैं ये भी हर मौसम को झेलते हैं और हर मौसम के बाद कहीं ना कहीं अपनी जगह वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। और श्रोता, वो क्या हमें सिखाते हैं वो ज़रूर कार्यक्रम में हम आपके साथ बात साझा करेंगे। तो कार्यक्रम के साथ आप सभी जुड़े हैं ऐसा हम मानते हैं, और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे, भाई कहाँ हो आप सभी, जल्दी से आ जाइए, रेडियो गुंजन धर्मशाला ऑन कर लीजिए और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो शुरू हो चुका है और आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा कि हमारे कार्यक्रम को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हम बीच बीच में डालते रहते हैं और हमें कई मैसेजेस आते हैं जिन्हें पढ़कर हमें अच्छा लगता है, और आपके सुझाव भी कई बार हमें मिलते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। श्रोताओं, तो आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी हम कार्यक्रम और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी इंसान यहाँ पर सर्व संपन्न गुण नहीं है, किसी के पास भी पूरे गुण हो ऐसा संभव नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे भी कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और अगर हमें वो गलतियाँ कोई बता दे, समझा दे या कोई अपना सुझाव दे दे तो हमें भी अच्छा लगता है, आपके सुझावों का हम इंतज़ार करेंगे। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं आपके अपने रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, ये जो गीत अभी आपने सुना अनुराधा, माफ़ कीजिएगा, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में, और प्यार हो गया फिल्म से। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे श्रोताओं, और ब्रेक के बाद वापस हम कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और आप सभी भी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप सभी ट्यून इन हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओं, इस अंतराल के बाद अब हम अपनी बातों के साथ साथ जानकारियों की और भी रुख करेंगे, क्योंकि जानकारियाँ हम तक पहुँचेंगी तभी हम उन जानकारियों का लाभ ले सकेंगे। तो श्रोताओं, पहली जानकारी जो आप तक पहुंचाई जा रही है वो इस तरह है कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं में लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही श्रोताओं, ऑनलाइन पंजीकरण आप कर सकते हैं और चयन परीक्षा जो है वो 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी। तो आप में से जो भी लोग इस खबर का या इस जानकारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आप तक ये जानकारी पहुंचा दी गई है और आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। साथ ही श्रोताओं, जानकारियों में एक जानकारी और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विद्युत उपमंडल 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते 5 सितंबर को 11 केवी धर्मशाला फीडर के तहत आने वाले भटेड़, शीला, पासू, अपर मनेड़, कनेड़, हरनेड़, लोअर सुक्कड़ और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर उक्त कार्य अगले दिन किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये जानकारी आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और हम यही कहेंगे श्रोताओं, आजकल हर इलाके में ऐसा हो रहा है कि कुछ समय के लिए लाइट जो है वो बंद की जा रही है और जिसकी जानकारी आपको पहले से दे दी जा रही है। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं कि रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे विद्युत विभाग को करने होते हैं, उसके लिए लाइट जो है वो बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और कई बार हमें जानकारी नहीं होती है और हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं या हम लोग ये सोचते हैं कि आज लाइट क्यों नहीं है और हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है। ऐसे से बहुत सारे काम हैं जो बिजली से होते हैं, लेकिन कई बार अगर ये सब चीज़ें अगर हैं, अगर कहीं से बिजली बंद की गई है, इट मींस कि कहीं ना कहीं कोई ख़राबी आ गई है या उसकी मुरम्मत का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा संयम हमें रखना चाहिए और विभाग का सहयोग करना चाहिए। तो श्रोताओं, इन जानकारियों के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस लौटते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो चलिए श्रोताओं, हम भी सुनते हैं और आप भी सुनिए इस प्यारे से गीत को, और इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातों को जारी रखेंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत श्रोताओं, और ये गीत अपने आप में सच में बहुत कुछ कहता है। देखें अपनी किस्मत में कांटा है या फूल है, अपनी किस्मत में कांटे हों या फूल हों श्रोताओं, जो भी किस्मत में होता है वो मिलकर ही रहता है। लेकिन अगर हमें कांटे मिल भी जाएँ तो उसके लिए अगर हम पछताते रहें, दुख मनाते रहें तो भी बहुत मुश्किल है। इसलिए कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, हमें उसे खुश होकर मुस्कुराकर ही निभाना चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बारिश के बाद हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। बहुत कुछ श्रोताओं ये पहाड़ हमें सिखाते हैं। सबसे पहली बात तो श्रोताओं, पहाड़ हमें ये सीख देते हैं कि मुश्किलें हमेशा जो हैं वो नहीं रहती हैं। जैसे ही बारिश कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय बाद, एक दिन भी हो सकता है, दो दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो बारिश थम जाती है। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख जो हैं वो आते रहते हैं। इसलिए अगर आज ज़िंदगी में कुछ मुश्किल चल भी रही है तो हमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि हर बारिश के बाद आसमान साफ होता ही है। साथ ही श्रोताओं, ये जो पहाड़ हैं हमें ये भी सीख देते हैं कि मजबूत बने लेकिन कठोर नहीं। हमारे पहाड़ जो हैं वो कितने ही मजबूत हैं, बारिश आती है, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। हमें भी परिस्थितियों के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पहाड़ों की तरह ही अपने भीतर संवेदनशीलता जो है वो भी हमें रखनी चाहिए। श्रोताओं, आप लोगों ने भी अगर कभी ऐसा देखा हो, सोचा हो, कभी अकेले बैठ के अपने बरामदे में बैठ जाइए या अपनी छत पर बैठ जाइए, जब भी बारिश के बाद जो मौसम होता है या उस समय जो पहाड़ों का नज़ारा होता है उसे निहारिए। कई बार जब हम खाली बैठ जाते हैं और उन्हें देखते हैं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में चलती है। और श्रोताओं, अगर ऐसा करना है तो हमें एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और वो चीज़ आप सभी समझते हैं। हम लोग हमेशा कहते ही रहते हैं कि मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर हम मोबाइल को पकड़ के रखेंगे तो उस स्क्रीन के अंदर ही हम कैद होकर रह जाएंगे। उस स्क्रीन में बहुत कुछ दिखता है, जो हम देखना चाहें उसे जितना मर्ज़ी स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो बाहर के नज़ारे हैं, जिनके लिए हमें अपनी आँखों को अपने मोबाइल की स्क्रीन से हटा कर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखना पड़ेगा, वो जो नज़ारे हैं ना श्रोताओं, वो हमें ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय अपने आप को दिया कीजिए, और जब भी ऐसा मौसम हो ज़रूर प्रकृति को निहारा कीजिए। कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे बातें करती है, लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। किसी के साथ भी बात करने के लिए हमें अपना मोबाइल फ़ोन साइड में रखना पड़ता है और आँखों में आँखें डालकर बात करनी पड़ती है। और सोचिए श्रोताओं, कभी अगर हम बात कर रहे हों, किसी भी इंसान से अगर हम बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है, हम कंटिन्यू अपने मोबाइल को, स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ना तो बात करने वाले को मज़ा आता है बात करने का, ना ही सुनने वाले को। इसलिए ऐसा करना चाहिए, किसी से बात करो तो थोड़ा सा आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे को देखकर बात कीजिए। और आजकल हमारी आंखें जो हैं, या सोच विचार जो भी है, वो हमारे मोबाइल पर ही सीमित होकर रह गया है। और सोशल मीडिया की, मोबाइल की बात अगर हमने छेड़ दी, तो एक छोटी सी बात और भी कहना चाहेंगे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि फेसबुक पर बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं।

बेवजह किसी और को कुछ बोल देंगे तो बातें बढ़ती जाती हैं, तो बातों को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। देखिए, बात हम कर रहे थे हिमाचल के पहाड़ों की, और जाते जाते पहाड़ों से हम लोग फिर मोबाइल में चले गए। बात वही है कि हम घूम फिर कर कहीं से भी है वो मोबाइल में चले ही जाते हैं। खैर, अब हम मोबाइल से भी निकलते हैं बाहर और कार्यक्रम में चलते हैं फिर से, और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो चलिए सुनिए इस प्यारे से गीत को, और बातों को हम जारी रखेंगे लेकिन इस गीत के बाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत। और श्रोताओं, ये गीत सच में यही कहता है कि दिल मेरा चुराया क्यों, दिल अगर तोड़ना ही था। तो बिल्कुल श्रोताओं, अगर आपने किसी का दिल तोड़ना है तो उसका दिल चुराना भी नहीं चाहिए और दिल किसी का भी तोड़ना चाहिए ही नहीं। श्रोताओं, ऐसे गीत कई बार लोग कहते हैं कि सैड सॉन्ग है, लेकिन सैड सॉन्ग में श्रोताओं कई बार बहुत कुछ बातें जो हैं वो कह जाते हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि सैड सॉन्ग है ये हमें नहीं सुनने हैं, तो फिर सैड सॉन्ग सुनेगा कौन? और ज़रूरी नहीं है कि हम दुखी हों या हमारा मूड अच्छा ना हो तभी इन गीतों को सुना जाए। और मेरा तो ये मानना है कि जब हमारा मूड ठीक ना हो तब अगर हम सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हमारा मूड और ख़राब होता है। और अगर आपका मूड अच्छा है, सैड सॉन्ग आप उस समय भी सुन लेंगे तो आपका मूड अच्छा ही रहेगा। इसलिए ये धारणा जो है कि सैड सॉन्ग सुन के दुख होता है या अच्छा फील नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गीत बने हैं अगर उन्हें सुनेंगे तो बहुत सारी बातें दिल की ऐसी उस गीत में होती है जो सुन के अच्छा लगता है और हम उन गीतों को गुनगुनाते भी हैं। तो श्रोताओं, ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत कार्यक्रम में और भी आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि बारिश के बाद जो बदलाव होता है उसकी जो खूबसूरती है वो हमें क्या समझाती है। बारिश के बाद पहाड़ों का रंग बदल जाता है, सूखी धरती में हरियाली दिखाई देने लगती है, यानी कि प्रकृति हमें बता रही होती है कि बदलाव से डरना मत। कभी कभी बदलाव ही नई ज़िंदगी की शुरुआत होता है। बिल्कुल श्रोताओं, जब हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन श्रोताओं सच मानिए, ये जो बारिश है, ये जो पहाड़ हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। नीरस पड़ी धरती या सूखी पड़ी घास जो है उस पर जब हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें जान आ जाती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब बड़ी तेज़ बारिश पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उन छोटी छोटी पत्तियों को उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच रहा होगा, कहीं ना कहीं उन्हें चोट पहुँच रही होगी, लेकिन उस चोट के बाद जब उनका रंग निखर कर आता है और वो जो घास कह लीजिए, ये जो फूल खिलते हैं और ये जो पेड़ों पर नए पत्ते निकलते हैं तो उन्हें देखकर सच में अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अगर ऐसा हमारे साथ भी होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है वो ज़िंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको पता है कि 7 बजे हम आपको सुनवाते हैं समाचार, तो समाचारों से पहले आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और गीत। लीजिए, सुनिए इस गीत को।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम में। अभी सुना श्रोताओं आपने अमानत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और श्रोताओं अब समय हो रहा है 7 बज रहे हैं और अब हमें आपको सुनवाने हैं समाचार। तो कार्यक्रम को थोड़ा सा रोकते हैं और पहले सुन लेते हैं समाचार, बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत

इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो कोको और टोमा जूनियर कोको को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिस डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्को को हराकर हार का सामना करना पड़ा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है आप सभी सुन रहे हैं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने रेडियो सेट जो है अभी ऑन किया होगा, तो उन्हें हम बता दें कि हम आज बात कर रहे हैं बारिश के बाद हिमाचल के पहाड़ जो हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। तो श्रोताओं, अपनी बातों पर आएंगे, अपने विषय पर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक गीत, और इस गीत को लेकर आए हैं सौदागर फिल्म से। इस गीत को आवाज़ से सजाया है सुखविंदर सिंह ने। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

जी श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, गीत संगीत के साथ साथ जानकारियां जो हैं वो भी हमें आप तक पहुंचानी है, तो फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर और लेते हैं जानकारी। देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने अधिसूचना जारी कर मेन चौक से सिविल सप्लाई गोदाम देहरा तक की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित किया है। उपायुक्त ने बताया कि सड़क पर वाहन जो है वो बेढंगे से खड़े रहते हैं और उसके कारण क्षेत्र में बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा, स्कूली बच्चों की आवाजाही, सब डिविजनल आयुर्वेदिक अस्पताल तक सुगम पहुंच तथा आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही श्रोताओं, उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस सड़क मार्ग पर नो पार्किंग जोन के साइन बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को नो पार्किंग संबंधी प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने को भी कहा है। उपायुक्त ने कहा है कि नो पार्किंग जोन में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वाहनों को टो भी किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। इस जानकारी के साथ साथ श्रोताओं, हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी हम अपनी गाड़ी को कहीं पर भी पार्क करते हैं तो हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि किसी को उससे कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि थोड़ी देर का काम है, हम निपट कर आ जाएंगे, लेकिन उस थोड़ी देर में ट्रैफिक जाम वाली जो एक स्थिति बन जाती है और उसमें कई बार बहुत जल्दी में लोग होते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल पहुंचना है या अपने कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना है, तो उन्हें भी देरी हो जाती है। तो इन सब बातों का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं रंग फिल्म का गीत। इस गीत को सजाया है अपनी आवाज़ों से अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

श्रोताओ, आप सभी समय ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं इस समय अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। एक बार फिर से बता दें, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसे आप रोज़ सुनते हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं आप तक जानकारियाँ पहुँचाएँ, आपका मनोरंजन करवाएँ, गीत आपको सुनवाएँ और साथ ही बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उस पर भी हम आपके साथ बात करते हैं, ताकि हम होशियार रहें, समझ रखें कि कहाँ क्या हो रहा है, वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। ऐसी ही एक खबर श्रोताओं आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो कि हमें सिखाती है कि हमें ठगी में नहीं आना है या किसी के झांसे में नहीं आना है और अपना वक्त, अपना पैसा नहीं गंवाना है। हमीरपुर ज़िला में विदेश भेजने के नाम पर श्रोताओं धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला पुलिस तक पहुंचाने के बाद जांच शुरू हो गई है। नीदरलैंड भेजना और वीज़ा लगवाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है। श्रोताओं, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह नीदरलैंड जाना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने चंडीगढ़ में स्थित एक एजेंसी से संपर्क किया। शिकायत के अनुसार वहां संबंधित व्यक्ति ने उसे नीदरलैंड भेजने के लिए प्रक्रिया पूरी करवाने और वीज़ा लगवाने का भरोसा भी दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीज़ा प्रक्रिया के लिए उससे कुल 3,50,000 रुपये लिए गए। इसके बदले उसे नीदरलैंड से संबंधित एक ऑफ़र लेटर भी उपलब्ध करवाया गया। उसे बताया गया था कि जुलाई अगस्त तक उसका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन निर्धारित अवधि तक वीज़ा जारी नहीं हुआ। इसके बाद उसने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। तो श्रोताओं, ये जो खबर है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कुछ भी करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो लगा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस काम के लिए हम ये पैसा लगा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए, जिसे हम वो काम सौंप रहे हैं या जिस भी एजेंसी से हम बात कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि श्रोताओं, इस काम के लिए इन्होंने भी अगर पैसा लगाया था, वो काम भी नहीं हुआ और जो अपने पास जमा पूंजी थी, कई बार हम कहीं ऐसे काम करने के लिए बाहर जाने के लिए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उधार ले लेते हैं कि हम जब कमाएंगे तो हम वापस दे देंगे, लेकिन श्रोता वो जब काम नहीं होता है तो वो जो किसी से उधार लिया पैसा है वो तो हमें किसी भी हालत में वापस मोड़ना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम परेशानी में आ जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं। तो ऐसी खबरें हमें यही जागरूक करती हैं कि हमें जागरूक रहकर सोच विचार के ही कोई कदम उठाना चाहिए और ठगी से बचना चाहिए। तो श्रोताओं, इस छोटी सी जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से हम लौटेंगे मनोरंजन की और चलेंगे, लेंगे कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत। अनुराधा पोडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में जुनून फिल्म का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट तक।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत में सावन की ही बात कही गई थी। ऐसा ना हो कि सावन बीत जाए और हम किसी का इंतज़ार कर रहे हों वो भी ना आए। तो श्रोताओं, आप भी अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि सावन अब ख़त्म होने ही वाला है। और किसी से मिलने का मन अगर आपका करता है, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, तो जल्दी से जल्दी उससे मिल लीजिए। और ऐसा दिल जब करे तो वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। ये वक्त जो है ये बिल्कुल हाथों से ऐसे निकलता जाता है जैसे मानो रेत निकल रही हो। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में गीतों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं बारिश के बाद हिमाचल के पहाड़ हमें क्या सिखाते हैं। श्रोताओं, बारिश के बाद पहाड़ अपने घाव भी हमें दिखाते हैं। कहीं रास्ते टूट जाते हैं, कहीं मिट्टी खिसकती है, कहीं पेड़ गिर जाते हैं। इससे हमें एक और ज़रूरी सीख मिलती है कि प्रकृति को जीतना नहीं है, प्रकृति के साथ जीना सीखना है। पहाड़ जो है श्रोताओं, वो हमें कहीं ना कहीं पालते हैं। नदियाँ हमें पानी देती हैं, जंगल हमें हवा देते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पहाड़ों को कूड़े, प्लास्टिक और लापरवाही से ना भरें। तो श्रोताओं, अगली बार जब बारिश के बाद आप भी कहीं किसी पहाड़ी रास्ते से गुजरें तो सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती ही मत देखिएगा, एक पल रुककर उसे महसूस कीजिएगा। शायद वो आपसे भी चुपचाप कुछ कहना चाहता हो कि बारिश आई थी, मैं भीगा ज़रूर था, लेकिन मैं फिर भी खिल उठा। और श्रोताओं, शायद यही हमारी ज़िंदगी भी है। कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम थक जाते हैं, कभी लगता है कि सब कुछ धुंधला हो गया है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि धुंध के पीछे पहाड़ होता है, बादलों के पीछे आसमान होता है, और मुश्किलों के बाद एक नई सुबह भी होती है। इसलिए बारिश से डरिए मत, उसके बाद आने वाली हरियाली पर भरोसा रखिए। बिल्कुल श्रोताओं, और हमें सच में भरोसा जो है वो रखना भी चाहिए। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। तो यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, हम तो लौट आए हैं इस अंतराल के बाद और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी लौट आए होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, देर ना करते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत श्रोताओं हमने लिया है कटी पतंग फिल्म से और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम का ये समय है और श्रोताओं, ऐसे में ऐसे प्यारे प्यारे गीत जब हम सुनते हैं तो सच में अच्छा लगता है और गुनगुनाने का मन भी कर जाता है। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप जैसे जानते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनाते हैं कहानी। तो अब समय हो गया है कहानी सुनवाने का। तो श्रोताओं, कहानी का नाम सुनते ही हम सभी सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि क्या कहानी होगी और उस कहानी का एंड क्या होगा, उससे हमें क्या सीख मिलेगी। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, हर किसी को कहानियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रोताओं, अब देखा जाए तो कहानियों का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले बच्चे जो थे या बड़े भी अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे, कहानी सुनते थे और हम कहते थे कि अपना एक्सपीरियंस हमें बताइए, उस टाइम पे ज़माना कैसा था, क्या होता था। और बच्चों के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ख़ास करके अपने दादा दादी नाना नानी से, कि आप लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। अब तो ऐसा होता है, आपके समय में तो फ़ोन नहीं होता होगा, आपके समय में लाइट नहीं होती होगी। तो बच्चों में एक क्वेश्चन करने की एक ललक रहती थी, बात करते थे। लेकिन वही बात है कि अब तो वो कहानियाँ जो नाना नानी दादा दादी से हम सुना करते थे, वो भी हमारे मोबाइल फ़ोन ने छीन ली हैं। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी में ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ भी सुनना हो, कुछ भी समझना हो, कोई भी बात पूछनी हो, कोई सलाह लेनी हो या कुछ जानना हो, तो बस हम अपने मोबाइल को उठा लेते हैं। अच्छी बात है कि हमारे हाथ में आज हर चीज़ है, हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल वक्त पे हम क्या कर सकते हैं इसकी सलाह देने वाला है। लेकिन वो कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी के मुँह से सुनते थे, वो अब खो गई हैं। खैर श्रोताओं, कहानी की ओर बढ़ते हैं श्रोताओं। और आज की कहानी जो है वो यही है कि भाई से बड़ा जो शुभ चिंतक है कोई नहीं होता। ये बात कितनी सही है, ये तो अब क्या ही कहें, क्योंकि आजकल के समय में देखा जाए तो सच में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कहानी की ओर बढ़ते हैं कि एक गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया था। कुएं में उतरने की कला सिर्फ गाँव के भोला राम को आती थी। भोला राम बोलता है कि प्रधान जी, मैं कुएं में उतर तो जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि रस्सी पकड़ने में सबसे आगे मेरा भाई हो। और प्रधान ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो भोला राम जो है वो कुएं में उतर गया। फिर उसने बछड़े को रस्सी बांध कर ऊपर भेज दिया। जब भोला राम को गांव वाले खींच कर बाहर निकाल रहे थे, तब अचानक उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। किस पर? जो लोग रस्सी खींच रहे थे। गांव वाले रस्सी छोड़कर भाग गए। अब श्रोताओं देखिए, मधुमक्खियों का कोई झुंड आकर अगर हमें ही पड़ जाए तो हम लोग तो अपनी जान बचाकर जहां होंगे वहीं से भाग निकलेंगे। मगर भोला राम के जो दोनों भाई थे वो वहीं डटे रहे। मधुमक्खियों ने उनसे आकर लिपट कर बहुत उन्हें काटा भी, मगर फिर भी वो भाई जो थे वो डटे रहे। इसके बाद श्रोताओं, भाइयों ने रस्सी जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। अगर छोड़ देते तो भोला राम के प्राण संकट में पड़ जाते। दोनों भाई जी जान लगाकर खींचते रहे और भोला राम को बाहर निकाल लिया। तो श्रोताओं, ये तो भोला राम की कहानी थी। लेकिन ऐसे ही भोला राम हमारे बीच में भी बहुत सारे होते हैं और सच में अपने भाइयों पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करना भी चाहिए श्रोताओं। जिस रिश्ते में विश्वास ना हो, वो रिश्ता तो रिश्ता ही नहीं होता। तो कहानी का मॉरल क्या है, कहानी हमें क्या सिखाती है? जब जान दाव पर लगी हो, तब भाई से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। सारी दुनिया छोड़कर भाग जाएगी, मगर भाई आखिरी सांस तक साथ लड़ेगा। लेकिन श्रोताओं, आजकल के समय में हमने बहुत बार देखा है, बहुत सी घरों की खबरें हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि भाई भाई क्या दुश्मन हो जाता है। जगह ज़मीन के लिए वो एक दूसरे पर इतने प्रहार करते हैं कि तब समझ नहीं आता कि सच में भाई हितैषी होते हैं या क्या। खैर जो भी है, कहानियाँ कहते हैं ना कि पुराने समय की कहानियों को सुना जाए तो सच में ऐसे रिश्ते होते थे और भाइयों में प्यार होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे या हमारे भाई पढ़ते थे, और चाहे हम कितना भी लड़ते हों, एक दूसरे को मारते भी हों, लेकिन जब कोई तीसरा आकर हमें कुछ बोले या मारे तो हमारा भाई ही होता था जो सबसे पहले आगे आके लड़ता था। तो भाई रिश्ते तो रिश्ते ही हैं, उन्हें निभाना भी आना चाहिए और रिश्तों पर विश्वास भी होना चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है 1942 आ लव स्टोरी फिल्म से, और इस गीत को अब आप सुनेंगे आप सभी के रेडियो सेट पर।
1: साहब के साथ

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: पहले आज मुख्य समाचार। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने और नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं से भी इनपुट लिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां हैं, जिनकी ड्रेजिंग और डी लिस्टिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो राज्य सरकार को 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नदी में जमा सामग्री हटाने के लिए ड्रेजिंग कराने का सुझाव दिया था। इसके बाद उद्योग विभाग ने ड्रेजिंग की अनुमति दी, लेकिन माइनिंग की अनुमति न मिलने और अगली बरसात में काफ़ी सामग्री बह गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रेजिंग के दौरान रॉयल्टी ना लेने का सुझाव दिया, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि रॉयल्टी उसका अधिकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग का काम वन निगम के जरिए किया जा रहा है और इससे राज्य को 100 से 200 करोड़ रुपये तक की आय हो रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और ड्रेजिंग के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी मिलने की है। चौहान ने बताया कि पूरे हिमाचल में करीब 324 साइट्स हैं, जिनमें अभी तक केवल 5-6 जगहों पर वन मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल ने भी इसी मामले पर अनुपूरक सवाल पूछे और ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के मामले में घोटाले की आशंका जताई। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में माइनिंग से रॉयल्टी की आय वर्ष 2024-25 में 356 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछली सरकार के समय ये करीब 240 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री

0: भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान कर दिया गया है और 58 से 67 वर्ष की आयु के उन कर्मचारियों के लंबित लाभों का भी भुगतान किया गया है जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर करीब 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लगातार काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट ने सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व घाटा 6,804 करोड़ 61 लाख रुपए और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ 5 लाख रुपए रहा। दोनों ही निर्धारित सीमा से अधिक थे। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 86% हिस्सा वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी पर खर्च हो गया। केवल वेतन और पेंशन पर ही करीब 70% राजस्व खर्च हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.94% रहा जबकि राजकोषीय घाटा 5.44% दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज और सीमित पूंजीगत निवेश पर भी सवाल उठाए हैं और हिमाचल के तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
1: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
2: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9वें महीने में।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक 2026 और हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक 2026 शामिल है। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई जबकि युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक और सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए। पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र आज राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ सम्पन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित ये सत्र कुल 45 घंटे 30 मिनट तक चला और सदन की प्रोडक्टिविटी 91% रही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि अब विधानसभा की तरफ से विधायकों की गाड़ी में आधिकारिक झंडी लगेगी।
3: महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पर उन पर चर्चा होनी चाहिए। 545 पेज लगे थे, सबके उत्तर जो है सभी सामान्य सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कुछ चर्चा में नहीं आए हैं, जो डिस्कशन है उसमें मान्य सदस्यों ने किया है और आगे जो सत्र होगा उसमें कर देंगे। सभी सामान्य विधायकों को एक डिस्टिंक्ट फ्लैग मिलेगा जो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है लगेगा, जैसे हमारे एडिशनल चीफ के पास जो डिस्टिंक्ट फ्लैग है उससे, ताकि उनको कोई जब कभी वो प्रदेश से बाहर जाए या प्रदेश में आइडेंटिटी की कोई समस्या न।
0: संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई अहम बिल पारित हुए।
4: जी है कि इस बार हमारा मॉनसून सेशन जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है वो चला है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिन या दो दिन विस्तार किया गया, उसके बावजूद जो है सुचारू रूप से चला है और बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज पे सदन में चर्चा हुई है और जो विपक्ष के जो अच्छे सुझाव थे वो सरकार और मुख्यमंत्री जी ने माना है। सुचारू रूप से हिमाचल प्रदेश का ये मॉनसून सेशन बहुत अच्छा चला है।
0: दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में थी और सदन का माहौल अफरा तफरी वाला रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष ने मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को सदन में उठाया है उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार

0: ने प्रदेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
1: जो एक्ट यहाँ विधानसभा के अंदर लाए जा रहे हैं उसमें सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। एक नहीं अनेक ऐसे फैसले जो विधानसभा के अंदर बिल के रूप में पारित हुए लेकिन उसके बाद वो बिल हाईकोर्ट में सदन के अंदर सार्थक चर्चा करने का प्रयत्न किया, जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयत्न किया और जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से ईमानदारी से हुई लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया, इस बात का हमको खेद है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और जल क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ करना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक व सतत प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़कर व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल से जुड़े प्रमुख परिवहन मुद्दे भी उठाए। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य वैधता अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। 16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकास खंड की 22 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आज प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रधान संघ पांवटा साहिब के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पैसा जल शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। प्रधान संघ ने मॉनसून की बारिश के दौरान पंचायतों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला उपायुक्त से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल और दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: इक्यानवे दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। तो चलते चलते आपको सुनवा के जाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, दिल तेरा दीवाना, फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति। जय हिंद।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनना थी।
1: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी
0: अरे कभी कभी अरे कभी कभी अरे कभी कभी
1: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
0: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
1: कब्ज हो या काला मल
0: धीरे धीरे होगा हल।
1: भूल जाओ अगर गोली खाना
0: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
1: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
0: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे

0: अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज।
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गया।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
4: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा है।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
5: तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी।
6: जा जा के कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। सड़क तोड़ी तो भरनी होगी, दोबारा बनाने की लागत की 5 गुना रकम। प्रदेश सरकार जल्द खरीदेगी 1000 इलेक्ट्रिक, 200 हाइड्रोजन बसें। साई धर्मशाला में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल्स आज से 9 तक। 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव जीती आशा वर्कर्स पूरा कर सकेंगी अपना कार्यकाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितंबर को जिला व उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहा है। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर मेहुल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में बैंक से संबंधित श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वे संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माल रोड शिमला से सहकार सदन के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस नवीनीकरण कार्य पर 2.85 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत इमारत की हर मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। इस नवीनीकरण से पुराने भवन को एक नया आयाम मिलेगा। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सहकार भवन के नवीनीकरण कार्य को 15 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बहुमंजिला इमारत का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है। यह प्रदेश भर में आधुनिक और भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना के तहत मेजनाइन फ्लोर पर आधुनिक वर्कस्टेशन और केबिन पार्टीशन तैयार किए जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन वर्कस्टेशन और एडवांस स्क्रीनिंग एरिया बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसमेंट 1 में कॉन्फ्रेंस हॉल वर्क स्टेशन, बेसमेंट 2 में बच्चों के लिए समर्पित क्रैच क्षेत्र, बेसमेंट 3 में आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और एक व्यवस्थित स्टोरेज एलिवेशन का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा या जब्त वाहन छोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पे हिमाचल प्रदेश में सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों की ओर बढ़ रही है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने की पहले ही बजट में घोषणा की है। इलेक्ट्रिक बसों के साथ 12 साल का रखरखाव भी शामिल है। दिल्ली सरकार की ओर से खरीदी गई बसों की तुलना में प्रदेश को ये बसें कम दर पर मिल रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए 7 से 9 सितंबर तक ट्रायल होंगे। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों को 7 सितंबर सुबह 9 बजे साई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होगा। चयन के लिए आयु वर्ग के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई तय है। 1 जनवरी 2011 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 172 सेमी, 1 जनवरी 2010 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 174 सेमी, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 176 सेमी और 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले जन्मी खिलाड़ियों के लिए 180 सेमी कद अनिवार्य है। केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक JP शानी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोच, खेल किट, आधुनिक उपकरण, शैक्षणिक खर्च, भोजन आवास और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार की हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी गई हैं, जिसका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत लगभग 2 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इनमें से 90,000 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी तक किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चहत दी है, आशा कार्यकर्ताओं को राहत दी है। कोर्ट में निर्णय आशा कार्यकर्ताओं को कहा कि जो आशा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में चुनी गई हैं, उन्हें नियमानुसार कार्यकाल पूरा करने की अनुमति।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूँ।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: अरे भाई प्यार के चक्कर में तुम लोग और कितने चक्कर लोगे?
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में ज़रूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

सितारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।